अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कहने श्रोताओं, मैं या तो हम भी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हुई हूँ कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक। श्रोताओं कर देना अज दे कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे दे गीत दे गल है। बहुत सारे इं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अखे तंग।

जिन धर्मशाला गणेशोत्सव तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका गन्ने तो हाँ सारे इन्हीं बनी दिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

गणेश श्रोताओं, तो हाँ सारे ही इस वक्त कार्यक्रम सुना देना माटी थी महक जी श्रोताओ ता बढ़ते न कार्यक्रम जो अगे कने सुन देना कार्यक्रम दा प्यारा दिया अगला गीत तो हाँ सारे ये बनी दिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने बंदी।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये न्यूज बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। पीएम संकल्प पोर्टल के हेल्पलाइन खातों को हिम एक्सेस एसएसओ से जोड़ना अनिवार्य, एचएएस सहित अन्य पदों के लिए अब 15 तक करें ऑनलाइन आवेदन, जीएसटी में बड़े बदलाव की तैयारी। हर साल 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें। 17 दिन में रिफंड का प्रस्ताव हिम केयर में अब मिलेगा। 10 लाख का स्वास्थ्य कवच धर्मशाला और रामपुर में बनेंगे वन्य जीव अनुसंधान फील्ड सेंटर। एम्स बिलासपुर में अगले साल से मिलेंगी बोन मैरो व लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधाएं। हिमाचल प्रदेश के डिग्री व संस्कृत कॉलेजों, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सोलन और सरकारी शिक्षा महाविद्यालय धर्मशाला के अधिकारियों के लिए पीएम संकल्प 1100 हेल्पलाइन खातों को तत्काल हिम एक्सेस सिंगल साइन ऑन एसएसओ पोर्टल पर माइग्रेट करना अनिवार्य करने के बारे में है। उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने सभी संस्थान प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधिकारियों के हेल्पलाइन खातों को तुरंत ट्रांसफर करवाएं और उन्हें पूरी तरह एक्टिव रखें ताकि पोर्टल पर आने वाली जन शिकायतों का समय पर निपटारा किया जा सके। डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग के अनुसार पहले आदेश देने के बावजूद अभी भी 79 कॉलेजों ने नियमों का पालन नहीं किया है, जिसके कारण ये सख्त निर्देश जारी किया गया है। किसी भी तकनीकी समस्या के लिए अधिकारी हेल्प डेस्क या नोडल अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 के तहत एचएएस के अलावा विभिन्न विभागों में पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि अब 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। भर्ती प्रक्रिया में 13 और पद शामिल किए जाने के बाद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऑनलाइन पोर्टल फिर खोल दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत अब असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स एंड एक्साइज के 13 पद शामिल किए गए हैं। इस संबंध में मंगलवार को आयोग ने सूचना जारी की। इससे पहले बीते अगस्त माह में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 के तहत कार्मिक विभाग में एचएएस के 4 पद, ग्रामीण विकास विभाग में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के 10 पद, वित्त विभाग कोषागार में जिला ट्रेजरी ऑफिसर का 1 पद, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में जिला नियंत्रक का 1 पद और राजस्व विभाग में तहसीलदार के 6 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स एंड एक्साइज के 13 पद शामिल होने से अब कुल 35 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जीआई सर्जरी सुपर स्पेशलिटी का 1 पद भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी व्यवस्था को अधिक सरल और कारोबार के अनुकूल बनाने के लिए सरकार ने प्रक्रिया में कई अहम बदलावों की दिशा में कदम बढ़ाया है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत जीएसटी दरों में बदलाव हर साल 1 अप्रैल से लागू किए जाएंगे। इससे कारोबारियों और कंपनियों को पूरे वित्त वर्ष के लिए टैक्स दरों को लेकर बेहतर स्पष्टता मिल सकेगी। इसके साथ ही जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया को तेज करने की भी तैयारी है। पात्र मामलों में अधिकतम 17 दिनों के भीतर रिफंड जारी करने की व्यवस्था प्रस्तावित है। सरकार का मानना है कि इससे कारोबारियों की वर्किंग कैपिटल से जुड़ी समस्या कम होगी और टैक्स व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार जल्द ही इनवॉइस मैचिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके जरिए खरीद और बिक्री से जुड़े इनवॉइस के बीच होने वाले अंतर को पहले ही पहचानने में मदद मिलेगी। इससे इनवॉइस मिसमैच के कारण जारी होने वाले शो कॉज नोटिस की संख्या कम होने की उम्मीद है। सरकार के मुताबिक फिलहाल 61% जीएसटी रजिस्ट्रेशन 34 मिनट से कम समय में पूरे हो रहे हैं। नई प्रक्रिया के जरिए रजिस्ट्रेशन को और आसान और तेज बनाने पर जोर दिया जा रहा है। डायरेक्ट टैक्स सिस्टम की तर्ज पर जीएसटी प्रशासन को भी फेसलेस बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। शुरुआती चरण में यह व्यवस्था केवल फी जीएसटी से जुड़े मामलों में लागू किए जाने की योजना है। इसका उद्देश्य अधिकारियों और करदाताओं के बीच प्रत्यक्ष संपर्क कम करके प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है। जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक की तारीख में बदलाव किया गया है। अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण अब यह बैठक गुरुवार 8 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित भारत मंडप के समिट रूम में सुबह 11 बजे से आयोजित होगी। प्रस्तावित बदलावों में खरीदारों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। यदि किसी मामले में विक्रेता जीएसटी का भुगतान नहीं करता है तो केवल इस वजह से खरीदार का रिफंड अटकने से बचाने की व्यवस्था की जाएगी। इससे नियमों का पालन करने वाले कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। हिमाचल सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हिमकेयर अब नए बीमा मॉडल और बढ़े हुए स्वास्थ्य कवर के साथ सामने आने जा रही है। सरकार ने योजना के तहत प्रति परिवार सालाना स्वास्थ्य सुरक्षा कवच को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव तैयार किया है। नए मॉडल में 5 लाख रुपए का बेसिक कवर और 5 लाख रुपए का टॉपअप कवर होगा। इससे प्रदेश के करीब 10 लाख परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई व्यवस्था में केवल स्वास्थ्य कवर ही नहीं बढ़ेगा बल्कि हिमकेयर के संचालन और निगरानी का तरीका भी बदलेगा। फर्जी अस्पतालों, फर्जी बिलिंग, डुप्लीकेट क्लेम और सरकारी धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए बीमा कंपनी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग आधारित डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम अनिवार्य किया गया है। हिमकेयर के नए मॉडल में बीमा कंपनी के साथ अनुबंध की अवधि भी बढ़ाई जा रही है। चयनित कंपनी के साथ 1 साल की जगह 1095 दिन यानी 3 वर्ष का करार प्रस्तावित है। नई बीमा कंपनी के चयन के लिए टेंडर जारी कर दिया है। कंपनियां 12 अक्टूबर शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकती हैं। तकनीकी बिड 13 अक्टूबर सुबह 11 बजे खोली जाएगी। प्री बिडिंग बैठक में 10 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। हिमाचल में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को समझने और इसके समाधान के लिए अब वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाएगा। कोयम्बटूर स्थित सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री सैकॉन की टीमें इस काम के लिए धर्मशाला और शिमला जिला में रामपुर के सराहा में फील्ड सेंटर स्थापित करेंगी। हालांकि पहले चंबा के कुकती में सेंटर बनाने की योजना थी लेकिन फिलहाल इसे धर्मशाला में ही स्थापित करने की अब योजना है। संबंधित क्षेत्रों में भालू की मौजूदगी और मानव भालू संघर्ष की घटनाएं सामने आती रही हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल और उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर रिसर्च की जानी है। इसके लिए सैकॉन के विशेषज्ञों की टीम दोनों राज्यों का दौरा कर चुकी है। अध्ययन के दौरान टीमों की ओर से उन क्षेत्रों का मौके पर जाकर आकलन किया जाएगा जहां इंसानों और वन्य जीवों के बीच लगातार संघर्ष हो रहा है। इसमें भालू और तेंदुए के हमले, फसलों को होने वाला नुकसान और स्थानीय लोगों की आजीविका पर पड़ने वाले असर की जानकारी जुटाई जाएगी। इसके लिए घटनाओं का जियोटैग डाटा भी तैयार किया जाएगा। रामपुर के सराहा में भी फील्ड सेंटर स्थापित कर भालू से संबंधित घटनाओं का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर जैसे जिलों में मानव तेंदुआ संघर्ष की स्थिति का आकलन किया जाएगा। मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ते टकराव के पीछे कृषि भूमि का विस्तार, शहरीकरण और सड़कों का निर्माण भी प्रमुख कारण बताए गए हैं। इन गतिविधियों से वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास में कमी आने की बात अध्ययन में सामने आई है। ऐसे में वन्यजीव भोजन और सुरक्षित स्थान की तलाश में मानव बस्तियों के नज़दीक पहुँच रहे हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष के इस नए अध्ययन में शुरुआती चरण में 10 वन मंडलों को शामिल किया गया है। इन वन मंडलों में उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के लोगों को अब गंभीर और जटिल बीमारियों के इलाज के लिए देश के बड़े महानगरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नई सुविधाएं शुरू हो रही हैं। संस्थान में आगामी वर्ष से बोन मैरो ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट तथा कैंसर के अत्याधुनिक उपचार के लिए थेरानोस्टिक पद्धति की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के ग्रामीण व दुर्गम इलाकों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाने के लिए सभी सुविधाओं के युक्त मातृ शिशु केंद्र की स्थापना की जा रही है। एम्स बिलासपुर में शुरू होने जा रही थेरानोस्टिक पद्धति कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के खिलाफ जंग में एक मील का पत्थर साबित होगी। यह अस्पताल का एक ऐसा अत्याधुनिक और विशिष्ट विभाग होगा जहां एक ही छत के नीचे कैंसर का सटीक निदान और लक्षित उपचार एक साथ किया जा सकेगा। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना केवल कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं को चिन्हित कर उन्हें नष्ट करने में सक्षम होती है। इससे मरीजों को कम समय में अधिक प्रभावी और सुरक्षित इलाज मिल सकेगा। एम्स प्रबंधन द्वारा स्थापित किए जा रहे मातृ शिशु केंद्र में एक एडवांस लेवल टेलीमेडिसिन केयर सेंटर भी तैयार किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य हिमाचल के सुदूर पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं और नवजात की मृत्यु दर को न्यूनतम
1: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओहो काम तो बताइए बताइए।

0: बोलो।
1: आज लेना एक वादा है।
0: क्या?
1: आजा आजा, शादी का इरादा है।
0: क्या?
1: शादी का इरादा है।
0: शादी
1: का इरादा है।
0: शादी ना बाबा ना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं
0: बाबा,
1: सुनो तो। सुनो तो।

0: गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।
1: वेलकम फ्रेंड्स टू द शो दैट नेवर एंड्स। आई टेकिंग द चांस टू मेक यू डांस। You will move your feet and groove to the beat. So then, which beat would you like? Dosto, kaun sa dance pasand karenge aap? Rumba?
2: No!
1: Samba?
2: No!
1: Rumba?
2: No!
1: Samba?
2: No!
1: Tequila?
2: No!
1: Tango?
2: No!
1: Charleston?
2: No!
1: Polka?
2: No!
1: No!

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: सर मेरा फोन चोरी हो गया, आपका फोन दे दीजिए सर प्लीज, एक कॉल करना है सर प्लीज सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: एक कॉल करूँ सर पापा को बस सर प्लीज सर, फोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक जन के फोन से फोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है ये लीजिए सर आपका फोन, थैंक यू फोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: इतने पैसे, माय गॉड।
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जा रहे हैं ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुड़बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर।
6: डॉक्टर?
3: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
6: वो किसी को भी हो सकता है।
5: और अगर हो गया तो बिना फूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो
5: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: तो याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या। किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियां भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। स्टे ट्यून्ड।

0: सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला।
1: बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने क्या?

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। प्रातः के 9 बज चुके हैं और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी हाजिर हो गई हूँ। श्रोताओ आपसे करेंगे ढेर सारी बातें, जानकारियाँ साझा करेंगे और साथ ही साथ सुनाएंगे आपको प्यारे प्यारे से गीत। और कार्यक्रम में मौसम का हाल भी आपको ज़रूर बताएंगे और साथ ही साथ आपके साथ प्यारे प्यारे गीत हम साझा करेंगे। आज क्या कुछ खास है वो भी बताएंगे। जी हाँ श्रोताओं, आज है एयरफोर्स दिवस और इसके बारे में भी आपको विस्तार से हम कार्यक्रम में बताएंगे। तो बात हो रही है श्रोताओं कि आज का जो खास दिन है वो है इंडियन एयरफोर्स डे। कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या होता है इसके अंतर्गत और किस तरह की ये एयरफोर्स की दुनिया होती है, ये सब कुछ आपको कार्यक्रम में बताएंगे। और ये बताते हुए फाइटर फिल्म है जिसका गीत आपको सबसे पहले हम सुनवा रहे हैं। और फाइटर फिल्म आप सभी को पता होगा, एयरफोर्स से ही संबंधित इसकी कहानी है। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये सबसे पहला प्यारा सा गीत और बने रहिए हमारे साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ कार्यक्रम में अब जानते हैं इस समय धर्मशाला का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तापमान है और वातावरण में नमी है 71%। इस समय धूप खिली हुई है श्रोताओ। और धर्मशाला कि मौसम की अगर हम बात कहें तो कई बार जो है हमारे मौसम विभाग की जानकारियां भी धर्मशाला का मौसम फेल कर देता है। बताया गया हो कि बारिश होने वाली है तो यहाँ खिलखिलाती धूप खिलती है, और अगर धूप दिखाई गई हो तो यहाँ पे कब बारिश हो जाए उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। खैर श्रोताओ हमें तो आदत है इस मौसम में रहने की, और जैसा भी हो कुदरत के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बाकी मौसम जैसा भी हो उसका आनंद उठाइए। और अब कार्यक्रम में आपको अगला गीत सुनवा रहे हैं श्रोताओं, लेकिन आज का जो खास दिन है उसके बारे में भी हम आपको बता दें थोड़ा सा, बाकी विस्तार से कार्यक्रम में समय समय पर बताते रहेंगे। भारतीय वायुसेना दिवस आज मनाया जा रहा है, 8 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। और आज 8 अक्टूबर 2026 को भारतीय वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। ये दिन भारतीय वायुसेना के वीर जवानों के शौर्य समर्पण और देश की हवाई सुरक्षा में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन के बारे में और भी विस्तृत जानकारी और इस दिन से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें आपको कार्यक्रम में ज़रूर बताएंगे। फिलहाल समय हो रहा है आपको एक और प्यारा सा गीत सुनवाने का श्रोताओं। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और मेरे साथ इस समय आप कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। यूँ ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन।

श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं इस समय मेरे साथ गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में श्रोताओ, अब समय है आपके साथ आज का विचार साझा करने का। आज का विचार, मुलाकातें भी जरूरी हैं।

हमारी जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें हर कोई व्यस्त है और बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जिनको हम समय ही नहीं दे पाते, जिनसे हम मुलाकात तो नहीं कर पाते और कई बार तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि हम फ़ोन जो 24 घंटे हमारे हाथ में हमारे पास रहता है, सोते समय भी हम उस फ़ोन को अपने बिल्कुल करीब रखते हैं ताकि कोई नोटिफिकेशन आए या किसी की कॉल आए तो हम फटाफट फ़ोन को लपक कर देख लें। लेकिन कई बार कुछ रिश्तों को हम इतना दूर कर देते हैं कि फ़ोन हाथ में होने के बावजूद भी सब कुछ हमारे पास होता है फिर भी हम मुलाकातें भी नहीं करते और बात भी नहीं करते और इस तरह से कई सारे हमारे रिश्ते जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं श्रोताओं। और आज का विचार हमारा यही कहता है कि ठीक उसी तरह से जिस तरह एक पौधे को हम लगा करके फिर भूल जाते हैं उसकी केयर करना, उसको पानी खाद मिट्टी देना, उसी तरह से अगर हम उस रिश्ते को भी भुला देंगे तो वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कभी ना कभी मुलाकात करना भी ज़रूरी है, बल्कि हम ये कहेंगे कि समय समय पर मुलाकात करते रहें तो रिश्ता अच्छा चलता है और अगर मुलाकात ना हो पाए तो फ़ोन बहुत ही बढ़िया माध्यम है। आपको याद होगा आज से कुछ समय पहले जब हमारे रिश्तेदार दूर विदेशों में रहते थे तो उनसे बात करने के लिए जब वीडियो कॉल का चैट मैसेंजर पे ये दौर शुरू हुआ तो इंटरनेट ढूंढ ढूंढ करके हम लोग जाते थे और वहाँ पे एक घंटे के 40 रुपए पर आवर के हिसाब से हम देते थे, फिर समहाउ कनेक्ट होता था हमारा वीडियो जिसमें कई बार ब्लर होता था, फिर विदेशों में बैठे हमारे जो रिश्तेदार होते थे उनकी शक्लें हम देख पाते थे। और आजकल विद इन सेकेंड हम अपने ही हाथ में मोबाइल रखा है, उसको कभी भी ऑन करके हम उन्हें देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनका हाल कुशल क्षेम पूछ सकते हैं। लेकिन ना जाने थोड़ी सी ईगो हम में कहें वो आ गई है कि हम नहीं करेंगे अगर वो नहीं कर रहे, इस वजह से कई बार बहुत से रिश्ते हमारे टूट जाते हैं। तो श्रोताओं आज का विचार बहुत ही विस्तार से मैंने आपके साथ साझा किया, कहने का भावार्थ यही है कि जो भी रिश्ता है, जितने भी रिश्ते आपके हैं उन्हें आप बचाए रखिए, मुलाकातें कीजिए, मुलाकातें अगर संभव नहीं है तो फ़ोन पे छोटा सा मैसेज करके, छोटी सी कॉल या वीडियो कॉल करके आप उस रिश्ते को बचा सकते हैं, उस रिश्ते की खूबसूरती को आप बनाए रख सकते हैं। यही था हमारे आज का विचार का पूरा सार। और अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि श्रोताओं इस समय आप हमारे फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे साथ बातें तो नहीं कर सकते लेकिन आप हमें इस समय मैसेज ज़रूर कर सकते हैं कि आपको हमारा फेसबुक पेज पे लाइव आना कैसा लगता है और कार्यक्रमों के बारे में भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं जो अच्छे हैं उनके बारे में हम तारीफ़ सुन करके खुश हो जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप तारीफ़ करते भी हैं। और कई श्रोता हमें सुझाव भी देते हैं कि किस तरह से किस प्रोग्राम में क्या करना चाहिए, वो भी हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अपने जितनी भी टीम है उनके साथ साझा करते हैं। और कई बार हम टीम से मुलाकात नहीं कर पाते श्रोताओं, तो जो हमारा आज का विचार है कि हम रेडियो गुंजन का जो ये पेज है, रेडियो गुंजन का जो हमारा जहाँ तक रीच जाती है और जहाँ जहाँ हमारी टीम के सदस्य और हमारे श्रोता सुनते हैं उन तक हमारी बातें पहुँच ही जाती हैं। तो श्रोताओं मिलते रहिए और रेडियो गुंजन के साथ भी यूं ही जुड़े रहिए। और अब बातें हो गई हैं बहुत और अब लिए चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ 91.2 MHz पर।

श्रोताओ 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ।

और श्रोताओं, आज है भारतीय वायुसेना दिवस, इसके बारे में भी कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं। साल 2026 का थीम है, इस वर्ष 2026 भारतीय वायुसेना दिवस की आधिकारिक जो थीम है वो है भारतीय वायुसेना अचूक, अभेद, अभेद और सटीक। ये थीम रखी गई है और ये थीम वायुसेना की हर परिस्थिति में अचूक कार्रवाई, सुरक्षा की अभेद दीवार और सटीक वार करने के आधुनिक क्षमताओं को दर्शाती है। श्रोताओं, इस साल वायुसेना दिवस के जश्न को देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। बात करें सबसे पहले हिंडन एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद, मुख्य आधिकारिक परेड और फ्लाईपास्ट का आयोजन 8 अक्टूबर को गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर किया गया है। 3 साल के अंतराल के बाद मुख्य परेड की वापसी हिंडन बेस पर हुई है। यहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने परेड की सलामी ली। इसके बाद जोधपुर एयर शो, जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर एक भव्य हवाई प्रदर्शन आयोजित किया गया। ये प्रदर्शन भारत के पहले बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के साथ आयोजित हो रहा है, जो 26 सितंबर से 12 अक्टूबर 2026 तक चल रहा है। यहां वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाए। और इसके बाद काशी वाराणसी, इस साल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी के ऊपर नमो घाट से 80 घाट के बीच 22, 24 और 25 अक्टूबर 2026 को एक मेगा पब्लिक एयर शो का आयोजन किया जाएगा। इसमें पहली बार काशी के आध्यात्मिक महत्व को दर्शाते हुए आसमान में त्रिशूल फॉर्मेशन बनाया जाएगा। तो श्रोताओं, ये है हमारे जो हिंडन एयरफोर्स स्टेशन और जोधपुर एयर शो की बात, जो कि हो चुके हैं और कहीं पर हो रहे हैं। और वाराणसी की बात करें तो 22, 24 और 25 अक्टूबर को यहाँ पे मेगा पब्लिक एयर शो का आयोजन किया जाएगा। सिर्फ हिमाचल ही नहीं, रेडियो गुंजन को जहाँ जहाँ पे भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, अगर आपको मौका मिलता है वाराणसी जाने का तो इस शो में ज़रूर शामिल होइए, क्योंकि ये बात आपके साथ साझा करते करते हमारा ही मन कर रहा है कि काश किसी तरह से हम जुगाड़ लगाएं या जुगत लगाएं और ये जो 24, 25 और 22 अक्टूबर की तिथियां हैं इनमें किसी तरह से हम भी वाराणसी पहुँचें। तो ये बहुत ही मनोरंजक और इंटरेस्टिंग शो होगा जहां तक हम इसका अनुमान लगा रहे हैं। अगर आपको मौका मिलता है जरूर जाइए। श्रोतो, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। फेसबुक पेज पर हम लाइव आए थे थोड़ी देर के लिए और हमारे साथ हमारे कुछ प्यारे प्यारे श्रोता जुड़े थे। उनमें से एक है हमारी इंदु जी, जिन्होंने बहुत प्यारे से कमेंट भी हमें किए थे कि हमारा फेसबुक पेज पर आना उन्हें अच्छा लगता है, हमारे श्रोताओं को फेसबुक पेज पर आना अच्छा लगता है। उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और खुशी भी होती है श्रोताओं जब आप इस तरह से हमें सराहते हैं और इस तरह से आपको लगता है कि अच्छा है तो हम समय समय पर फेसबुक पेज पर भी लाइव आते रहेंगे और प्यारे प्यारे कार्यक्रम आपके लिए हम लाते रहेंगे। और श्रोताओं, अब जानकारियों के बाद लिए चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

What do you? श्रोताओ 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ अब रुख करते हैं जानकारियों की ओर। और इस समय हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी वो हिमाचल प्रदेश आए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीते कल समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई से अधिक की ऊंचाई पर स्थित 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल का दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और लेडी गवर्नर बिंदु गुप्ता भी मौजूद रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अटल टनल की इंजीनियरिंग विशेषताओं और निर्माण कार्य में गहरी रुचि दिखाई और अधिकारियों से इसके तकनीकी पहलुओं की जानकारी ली। उन्होंने आसपास के हिमालयी क्षेत्र में मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य को भी निहारा। इस अवसर पर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने अटल टनल को विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का उदाहरण बताते हुए कहा कि इसने लाहौल स्पीति को देश के बाकी हिस्सों के और अधिक करीब ला दिया है। उन्होंने कहा कि टनल भारत के विजन, तकनीकी क्षमता और दूर दराज व दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। राज्यपाल ने कहा कि अटल टनल आधुनिक बुनियादी ढांचे और स्मारक विकास की शक्ति का प्रतीक है तथा चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों में बड़ी अधोसंरचना परियोजनाओं को पूरा करने की देश की क्षमता का प्रेरणादायक उदाहरण है। श्रोताओं ये थी जानकारी। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं अब लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर। श्रोताओं गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम है और सुबह सुबह आपके मूड को थोड़ा सा बूस्ट करना हमारी कोशिश रहती है, तो थोड़ा सा झूम लीजिए क्योंकि आपको गाना सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में आगे झूम बराबर झूम फिल्म का। तो एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

श्रोतो झूम बराबर झूम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, शंकर महादेवन और साथियों की आवाज़ों में। ये गीत सुनकर आप झूमे या नहीं झूमे, लेकिन हम स्टूडियो में बैठे बैठे हमारा झूमने का मन जो है वो बिल्कुल कर रहा था। और चलिए अब झूमने के बाद थोड़ा सा चिल कर लीजिए।

श्रोतो, आप चिल कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, यूं ही चिल करते रहेंगे आप। लेकिन उससे पहले 9:50 पर आपको लिए चलेंगे हम प्रादेशिक समाचारों की ओर। प्रादेशिक समाचारों के ठीक बाद कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला यूं ही जारी रहेगा। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल दौरा संपन्न, अब से कुछ देर बाद लौटेंगी दिल्ली। प्रदेश में अब मौके पर ही भर सकेंगे यातायात चालान, नहीं काटने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। बर्फीले क्षेत्रों में जनगणना 2027 का दूसरा चरण पूरा, जनगणना निदेशालय ने जताया आभार। और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने चुनाव आयोग से की मांग, वीरभद्र सिंह के नाम पर नई पार्टियों के पंजीकरण पर लगे रोक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपने 3 दिवसीय हिमाचल दौरे के बाद दिल्ली लौटेंगी। इससे पहले कल उन्होंने अटल टनल रोहतांग का दौरा किया और सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से टनल के निर्माण और तकनीकी विशेषताओं की जानकारी ली। राष्ट्रपति ने अटल टनल को इंजीनियरिंग की उत्कृष्ट मिसाल बताते हुए कहा कि ये देश की अत्याधुनिक तकनीकी क्षमता और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के प्रयासों को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये टनल लाहौल स्पीति सहित सीमावर्ती क्षेत्रों को हर मौसम में देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बाद में राष्ट्रपति ने मनाली के हिडिंबा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। देर शाम राष्ट्रपति ने मनाली मॉल रोड की सैर की और बच्चों को चॉकलेट भी बांटी। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद कंगना रनौत व अन्य नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। प्रदेश में यातायात चालान भरना अब और आसान हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल शिमला में चालान टू पे पहल का शुभारंभ किया। इसके तहत अब वाहन चालक मौके पर ही चालान का रियल टाइम डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। इस सुविधा से लोगों को भुगतान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नई व्यवस्था के तहत परिवहन विभाग के अधिकारियों को एक्सिस बैंक द्वारा पॉइंट ऑफ सेल यानी POS मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही है। इस पहल का उद्देश्य न केवल भुगतान को सुविधाजनक बनाना है, बल्कि चालान राशि के संग्रह में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी है। प्रत्येक लेनदेन का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा और राशि सीधे राज्य कोष में जमा होगी, जिससे राजस्व हानि को भी रोका जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और शासन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिरमौर जिला के ददाहू में सेवा संकल्प अभियान के तहत निशुल्क स्वास्थ्य जांच और रक्तदान शिविर लगाया गया। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मियों को उनके उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष सेवा संकल्प और सिद्धांतों के लिए जाने जाएंगे।
1: इस प्रकार से पिछले 25 वर्षों के दौरान उन्होंने जो जन सेवा की है, अपने बाल्यकाल से लेकर और राजनीति में भी 25 वर्षों का जो उनका कार्यकाल रहा, सेवा संकल्प और सिद्धि का जो कार्य उन्होंने किया, इस देश को आगे ले जाने का जो काम उन्होंने किया और किस प्रकार से संघर्षमय जीवन व्यतीत करते हुए शीर्ष पद के ऊपर रहते हुए देश को आगे ले जाने में जो उनकी भूमिका रही, आज हम सबको ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम अपना बहुमूल्य योगदान इस देश की प्रगति में लगाएं।
0: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के 25 वर्ष पूरे होने पर शिमला के रिज पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने रंगोली और दीपों से सेवा उत्सव मनाया। कार्यक्रम में संगठन महामंत्री सिद्धार्थन ने सेवा ज्योति प्रज्वलित कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये 25 वर्ष केवल सत्ता या पद पर बने रहने की यात्रा नहीं, बल्कि सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र प्रथम की भावना को समर्पित है। प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना 2027 के दूसरे चरण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। क्षेत्रीय कार्य 1 सितंबर से 20 सितंबर और पुनरीक्षण कार्य 1 से 5 अक्टूबर तक डिजिटल माध्यम से मोबाइल ऐप के जरिए किया गया। इस दौरान अधिसूचित 40 प्रश्नों के माध्यम से बर्फबारी वाले क्षेत्रों में रहने वाले सभी व्यक्तियों की आवश्यक जानकारी एकत्रित की गई, जिसमें सामाजिक आर्थिक स्थिति, साक्षरता और प्रवासन से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े शामिल हैं। जनगणना निदेशालय ने इसे सफल बनाने के लिए सभी प्रगणकों, पर्यवेक्षकों और स्थानीय निवासियों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
2: यार दो दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
3: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
4: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
3: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
4: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम के दुरुपयोग को रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनके पति 6 बार मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कुछ लोग उनके नाम की साख का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पत्र में उल्लेख है कि राष्ट्रवादी वीरभद्र कांग्रेस, वीर कांग्रेस और राजा बुशहर जैसे नामों से नई पार्टियां बनाने की कोशिश हो रही है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उनके परिवार ने इसके लिए कोई अनुमति नहीं दी है और आयोग ऐसे किसी भी नाम से दल के पंजीकरण की अनुमति ना दें। कांगड़ा जिला में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए प्रशासन और महिला व बाल विकास विभाग ने मिशन भरपूर की शुरुआत धर्मशाला के रक्कड़ से की है। इसके तहत बच्चों को आयरन, जिंक, कैल्शियम और प्रोटीन युक्त वैज्ञानिक रूप से विकसित पूरक आहार दिया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
5: धर्मशाला के रक्कड़ से शुरू हुए इस अभियान के तहत बच्चों को वैज्ञानिक रूप से विकसित पोषण युक्त पूरक आहार उपलब्ध करवाया जाएगा। मिशन के तहत उपलब्ध करवाए जा रहे उत्पादों में आयरन, जिंक, कैल्शियम, प्रोटीन सहित आवश्यक पोषक तत्व शामिल किए गए हैं। पहले चरण में 2 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पर इस पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। बच्चों के पोषण स्तर और स्वास्थ्य मानकों में सुधार दर्ज होने के बाद अब इसे व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। अभियान के दूसरे चरण में 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए भी उपयुक्त पोषण उत्पाद उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अभियान के तहत अभिभावकों को बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के साथ पर्याप्त समय देने, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग कम करने और उनके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास पर नियमित ध्यान देने के लिए जागरूक किया जा रहा है। मिशन भरपूर 2.0 कुपोषण मुक्त बचपन और स्वस्थ भविष्य की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 6ठी से 8ठी के विद्यार्थी अब कौशल बोध कार्यक्रम के तहत बिना मिट्टी पौधे उगाना और बिना आग भोजन बनाना जैसे व्यवहारिक हुनर सीखेंगे। हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता ने बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू इस कार्यक्रम में 3 साल में 9 परियोजनाएं पूरी करनी होंगी।
6: सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी अब पढ़ाई के साथ खेती, तकनीक, भोजन और मानव सेवा से जुड़ व्यवहारिक कौशल भी सीखेंगे। कक्षा 6ठी से 8ठी तक के विद्यार्थी बिना मिट्टी के पौधे उगाने, बिना आग के भोजन पकाने, मशीनों के इस्तेमाल, पारिवारिक स्वास्थ्य पुस्तिका तैयार करने और विज्ञापन बनाने जैसी गतिविधियां करेंगे। इसके लिए प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में कौशल बोध कार्यक्रम शुरू किया है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू किए गए इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जिले के पुस्तक वितरण केंद्रों में पुस्तकें भेज दी हैं। निदेशालय के निर्देशानुसार जल्द ही स्कूलों में इनका आवंटन किया जाएगा। पाठ्यक्रम के आधार पर विद्यार्थियों से अलग अलग परियोजनाएं करवाई जाएंगी ताकि वे विषयों को पढ़ने के साथ साथ करके भी समझ सकें। 3 वर्षों में प्रत्येक विद्यार्थी को कुल 9 कौशल आधारित परियोजनाएं पूरी करनी होंगी। हर शैक्षणिक स्तर पर कम से कम 3 परियोजनाएं करवाई जाएंगी। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हवाले से पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है, अटल टनल वैश्विक स्तर का इंजीनियरिंग चमत्कार, एचआरटीसी को देंगे 1500 इलेक्ट्रिक बसें शीर्षक से। दिव्य हिमाचल लिखता है, मुख्यमंत्री ने ऊना जिला में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने के दिए निर्देश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल दौरा संपन्न, आज से कुछ देर बाद लौटेंगी दिल्ली। प्रदेश में अब मौके पर ही भर सकेंगे यातायात चालान, नहीं काटने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित, बर्फीले क्षेत्रों में जनगणना 2027 का दूसरा चरण पूरा, जनगणना निदेशालय ने जताया आभार और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने चुनाव आयोग से की मांग, वीरभद्र सिंह के नाम पर नई पार्टियों के पंजीकरण पर लगे रोक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सुन रहे हैं और प्रादेशिक समाचारों के बाद फिर से सभी श्रोताओं का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। और इंतज़ार लंबा ना हो जाए आपका, इसलिए मनोरंजन की ओर लिए चलते हैं और बाकी की बातचीत जानकारियाँ आपके साथ साझा करेंगे इस गीत के बाद।

0: श्रोताओ 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ फेसबुक पेज पर फिर से हम लाइव आए हैं और बता दें आपको कि धर्मशाला के साथ साथ इस समय 88.4 हमीरपुर डटवाल की आवाज़ में भी हमें आप लाइव सुन रहे हैं और फेसबुक पेज पर भी हम लाइव आए हैं। और बता दें कि थोड़ी देर पहले भी हम लाइव आए थे, हमारे श्रोता हमारे साथ लाइव में जुड़े थे और उन्होंने कहा था कि फेसबुक पेज पर लाइव आना उन्हें अच्छा लगता है और ये सुन करके हमें भी, हमारी टीम को भी बहुत खुशी हुई। चलिए श्रोताओं अब रुख करते हैं बातचीत की और जानकारियों की और आज हम मना रहे हैं इंडियन एयरफोर्स डे। और इंडियन एयरफोर्स डे के बारे में आपको बताया हमने कि कब शुरू हुआ, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, वहीं बात करते हैं अब एक और। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन के साथ और गुंजन एक और नाम जो आपके साथ साझा कर रही हूं मैं, गुंजन सक्सेना। जी हां श्रोताओ, गुंजन सक्सेना हमारी भारतीय नौसेना की वो अधिकारी जो पहली भारतीय कह सकते हैं हम फाइटर पायलट थी और 1999 का जो हमारा कारगिल का युद्ध था उसमें उन्होंने अपने विमान के साथ हमारे देश की सेवा की और बहुत से हमारे भारतीय जो जवान थे उनकी जान बचाने में भी उन्होंने खूब भरपूर मेहनत की और अपनी जाबाजी का परचम उन्होंने उस युद्ध के दौरान जो है वो लहराया। और गुंजन सक्सेना के ऊपर 1999 में ये जो कारगिल का युद्ध था तब उनकी बहादुरी हम सब ने देखी सुनी और 2020 में इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है जो कि आप लोगों ने देखी भी होगी और अगर नहीं देखी तो देखिएगा। लेकिन फिल्म की कहानी में थोड़ा सा इन्होंने आपत्ति जताई है कि उसमें जो पुरुष कह सकते हैं भाई का किरदार निभाया है या इनके ऑफिसर्स हैं उनका किरदार निभाने वाले लोगों ने इनके साथ थोड़ी सख्ती से जो पेश आए हैं, कह सकते हैं कि महिला पुरुष का जो एक होता है अंतर उसको ज़्यादा दर्शाने की कोशिश की है कि महिला है तो किस तरह से आर्मी में आ सकती है और किस तरह से फाइटर प्लेन चला सकती है। लेकिन गुंजन सक्सेना ने खुद इस बात के बारे में स्पष्टीकरण दिया है कि उनके साथ आर्मी में रहते हुए इस तरह का कोई भी व्यवहार नहीं किया गया। उनके जो भाई थे या उनकी सेना में जो भी उनके सहयोगी थे, साथी थे, उन्होंने उनके साथ पूरा पूरा सहयोग किया तभी वो जा करके उनके सहयोग से और अपनी मेहनत से जो है वो इतना कर पाई। तो श्रोताओं भारतीय वायुसेना दिवस की बात रही है और हमारी इंडियन एयरफोर्स की इतनी जाबाज जो हमारी सैनिक रही हैं गुंजन सक्सेना, उनकी बात ना हो तो ये कार्यक्रम भी अधूरा सा रहेगा और हमारी नौसेना के बारे में बताना भी थोड़ा सा अधूरा रह जाता। तो चलिए हमने जिक्र किया गुंजन सक्सेना का, ज़रूर पढ़िएगा इनके बारे में, आप पढ़ सकते हैं और फिल्म भी देख सकते हैं। फिल्म के बारे में भी आपको बताया, बहुत ही प्यारी कहानी है। सिर्फ एक बात जो इन्होंने क्लैरिफाई भी की है वो है, और बाकी अब बातों को लगाते हैं विराम, श्रोताओं लिए चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर। गुंजन सक्सेना के ऊपर बनी हुई फिल्म से ही आपको ये प्यारा सा गीत हम सुनवा रहे हैं। एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक और बने रहिए यूं ही हमारे साथ 91.2 MHz पर।
1: वायुसेना का एक ही मकसद है, देश की रक्षा। उसके लिए सबसे पहले आप सबको एक सिपाही बनना पड़ेगा, तभी आप कॉकपिट में दाखिल होने के लायक बन पाएंगे। कल से आप सबकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। Is that clear?
2: Yes, sir!

0: रहा है?
1: सॉरी सर।
0: जंग में गोलियां चलेंगी तुम्हारी, सॉरी नहीं।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोताओं, अब लिए चलते हैं आपको आज के दिन के इतिहास की ओर, बताते हैं क्या कुछ खास घटा था आज के दिन इतिहास में। श्रोताओं, भारतीय वायुसेना दिवस 1932, 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। आज भारत अपना 94वां वायुसेना दिवस मना रहा है। इस साल 2026 वायुसेना दिवस की थीम भारतीय वायुसेना अचूक, अभेद और सटीक है। श्रोताओं, आज ही के दिन 1919 यंग इंडिया पत्रिका, महात्मा गांधी ने 8 अक्टूबर 1919 को यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। इसके साथ ही श्रोताओं, आज ही के दिन 1936 हिंदी और उर्दू साहित्य के महान लेखक और कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद जी का निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। ১৯৮৯ आज ही के दिन संपूर्ण क्रांति के प्रणेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का निधन भी 8 अक्टूबर 1989 को हुआ था। ১৮ अक्टूबर 2020 लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और प्रमुख दलित नेता रामविलास पासवान का निधन 8 अक्टूबर 2020 को हुआ था। और श्रोताओं, इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं जो विश्व से जुड़ी हुई हैं, यानी शिकागो भीषण आग, आज ही के दिन 1871 अमेरिका के शिकागो शहर में विनाशकारी आग लगी थी जिसमें हजारों इमारतें नष्ट हो गई थी। ১৮ अक्टूबर 1956 मेजर लीग बेसबॉल में डॉन लार्सन ने वर्ल्ड सीरीज के इतिहास में पहला परफेक्ट गेम 8 अक्टूबर 1956 को खेला था। ১৮ अक्टूबर 1993 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रंगभेद की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका पर लगे आर्थिक प्रतिबंध 8 अक्टूबर 1993 को हटा दिए थे। श्रोताओं, ये थी भारत और इतिहास से जुड़ी हुई घटनाएं जो आज के दिन इतिहास में दर्ज हैं। अब चलते हैं वर्तमान की ओर और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। श्रोताओं को बता दें कि इस समय आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं भारतीय वायुसेना दिवस, और इस दिवस के बारे में बात करते हुए हमने जिक्र किया हमारी भारतीय वायुसेना की अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना के बारे में। तो आइए गुंजन सक्सेना के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना भारतीय वायुसेना की एक पूर्व हेलीकॉप्टर पायलट हैं, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अपनी बहादुरी से इतिहास रचा था। और श्रोताओं, विमान उड़ाने वाली भारत की वो पहली महिला पायलट्स में से एक हैं। उन्होंने पूरे देश में द कारगिल गर्ल के नाम से जाना जाता है, और उनकी सच्ची और प्रेरणादायक कहानी हम कह सकते हैं हम सब के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए बहुत ही अधिक प्रेरणादायक है। बात करेंगे कार्यक्रम में उनके जीवन के बारे में भी, लेकिन उनके जीवन के बारे में बताने से पहले आपको एक प्यारा सा गीत हम सुनवा रहे हैं श्रोताओं। गीत के बाद वापस आएंगे गुंजन सक्सेना की जीवन की कहानी लेकर।

कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

श्रोताओं 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय वायुसेना दिवस, और वायुसेना की हमारी जो भारतीय महिला पायलट गुंजन सक्सेना है उनके जीवन के बारे में इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे। गुंजन सक्सेना का जन्म 1975 में एक सैन्य परिवार में हुआ था। उनके पिता और भाई दोनों भारतीय सेना में सेवा दे चुके थे, जिससे उन्हें बचपन से ही देश सेवा की प्रेरणा मिली। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। साल 1994 में जब भारतीय वायुसेना ने पहली बार महिलाओं को पायलट के रूप में चुनना शुरू किया, तब गुंजन सक्सेना ने SSB परीक्षा पास की। वे वायुसेना के ट्रेनी महिला पायलटों के पहले बैच का हिस्सा बनी, जिसमें कुल 25 महिलाएं शामिल थी। और श्रोताओं कारगिल युद्ध 1999 में उनकी जो भूमिका थी वो ऐतिहासिक थी। जब 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध छिड़ा, तब गुंजन सक्सेना की तैनाती उधमपुर में थी। युद्ध के दौरान उन्हें श्रीनगर भेजा गया और उन्होंने और उनकी साथी पायलट श्री विद्या राजन ने युद्ध के बेहद खतरनाक माहौल में निहत्थे चीता हेलीकॉप्टर उड़ाए। और श्रोताओं 900 से अधिक सैनिकों की जान उन्होंने बचाई। उनका मुख्य काम युद्ध क्षेत्र से घायल सैनिकों को एयरलिफ्ट करना, शवों को निकालना, सप्लाई पहुंचाना और दुश्मनों की स्थिति पर नज़र रखना था। उन्होंने युद्ध के दौरान 900 से अधिक घायल सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकाला था। एक मिशन के दौरान जब उनका हेलीकॉप्टर कारगिल एयर स्ट्रिप पर उड़ान भरने की तैयारी में था, तब पाकिस्तानी सेना ने एक रॉकेट मिसाइल दागी। वह मिसाइल उनके हेलीकॉप्टर के बेहद करीब से गुजरकर पीछे पहाड़ी से टकराई, लेकिन गुंजन ने हौसला नहीं खोया और अपना मिशन जारी रखा। श्रोताओं बात करें सम्मान की और उनके करियर की। कारगिल युद्ध में उनके इस अदम्य साहस और अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें शौर्य वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुंजन सक्सेना का वायुसेना में करियर 2004 में समाप्त हो गया। उस समय महिलाओं के लिए वायुसेना में परमानेंट कमीशन का प्रावधान नहीं था, जिसके कारण 8 साल की बेहतरीन सेवा के बाद वे सेवानिवृत्त हो गई। लेकिन जितना भी समय उन्होंने अपना दिया, उसमें वो हमेशा हमेशा के लिए अपना नाम जो है वो कह सकते हैं स्वर्णिम अक्षरों में लिखवा गई। कारगिल युद्ध हम सभी जानते हैं कि दुनिया के लिए, देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी एक ऐसा युद्ध था जो बहुत यादगार युद्ध था। और उस खतरनाक और यादगार युद्ध में इतनी बहादुरी और जाबाजी का परिचय देना और इतने सारे सैनिकों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित पहुंचाना, बहुत बड़ा हम कह सकते हैं साहस उसके लिए चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, और जो कि उन्होंने सेना में रहते हुए इतनी कम उम्र में दिखाई। और श्रोता गुंजन सक्सेना की कहानी आपके साथ साझा करने का मेरा एक उद्देश्य ये भी था कि हमारी और भी बेटियां हैं, भारत की बेटियां मैं कहूँगी, जो जीवन में इस तरह के साहसिक कार्य करना चाहती हैं। तो कई बार पारिवारिक स्थितियां ऐसी होती हैं कि हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा या आगे चलकर खासकर ससुराल का माहौल पता नहीं कैसा मिलेगा और वहाँ पे वो ये सब कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि ससुराल तो बहुत बाद की बात है, आपकी बेटी को आप किस तरह का माहौल और किस तरह का जीवन चुनने का मौका देते हैं वो पहले आता है। अगर आप उस रास्ते पर उसे डाल देंगे तो आगे आने वाली कोई भी ताकत उसे आगे बढ़ने से फिर नहीं रोक पाएगी। इसलिए अपनी बच्चियों का साहस बढ़ाएं, उन्हें हिम्मत दें और जीवन में वो आगे कुछ करना चाहती हैं तो उन्हें ज़रूर करने का मौका दें।
श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में चलते हैं फिर से कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर। आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यूं ही बने रहिए श्रोताओं, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

श्रोताओ 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ।

तो इंडियन एयरफोर्स डे आज हम मना रहे हैं और भारतीय एयरफोर्स के बारे में आपके साथ हमने बातचीत की, साथ ही साथ गुंजन सक्सेना जो कि हमारी भारतीय पायलट थी, फाइटर पायलट खासकर, उनके जीवन से प्रेरणादायक कहानी भी आपके साथ साझा की। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको फिर से लिए चलते हैं इंडियन एयरफोर्स की और बताते हैं आपको कि क्या कुछ और खास रहता है इस दिन। परेड के बारे में आपको हमने बताया श्रोताओं, और वायुसेना ध्वज के बारे में बात करते हैं अब। वायुसेना ध्वज वायुसेना निशान से अलग नीले रंग का है, जिसके शुरुआती एक चौथाई भाग में राष्ट्रीय ध्वज बना है और बीच के हिस्से में राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंगों अर्थात केसरीय, सफ़ेद और हरे रंग से बना एक गोलाकार आकृति है। और ये ध्वज 1951 में अपनाया गया था। आज भारतीय वायुसेना देश की रक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। आधुनिक विमानों, उन्नत तकनीक और बेहतर सैन्य क्षमताओं के साथ इंडियन एयरफोर्स देश के संप्रभुता और हवाई क्षेत्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नियमित प्रशिक्षण, रणनीतिक साझेदारी और मानवीय अभियानों के माध्यम से भारतीय वायुसेना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी अपना योगदान दे रही है। श्रोताओ, आप इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। बातचीत, जानकारियां, सब कुछ जारी रहेगा श्रोताओ, साथ ही साथ मनोरंजन भी जारी रहेगा। और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आज इंडियन एयरफोर्स के बारे में। जी हाँ, आज है 8 अक्टूबर और इंडियन एयरफोर्स का जो खास दिवस है वो आज के दिन मनाया जा रहा है। 94 साल जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स के पूरे हुए हैं और आज इंडियन एयरफोर्स का स्थापना दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। और श्रोताओ, क्या कुछ खास रहता है इंडियन एयरफोर्स का, वो आपको बताया। इंडियन एयरफोर्स का जो इस बार कहाँ कहाँ पे वो प्रदर्शन करेंगी, किस तरह से, उसके बारे में भी बताया। और वाराणसी में जो होने वाला उनका खासकर उन जो कार्यक्रम इंडियन एयरफोर्स द्वारा किया जाएगा वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मनोरंजक रहेगा। अगर आपको मौका मिलता है तो ज़रूर उसमें शामिल होइए। और इसके अलावा हमारी जो भारतीय वायुसेना है उसे विश्व की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना जो है वो माना जाता है। भारतीय वायुसेना को अमेरिका, चीन और रूस के बाद 4थी सबसे बड़ी वायुसेना जो है वो बताया जाता है। ये न सिर्फ युद्ध के दौरान भारत की रक्षा करती है बल्कि विभिन्न आपदाओं में राहत और बचाव कार्यों में भी मदद करती है। इसके अलावा दुनिया के अन्य देशों में शांति प्रयासों में भी इसकी भूमिका रही है। अस्थिरता और अन्य समस्याओं की स्थिति में अन्य देशों से भारतीय नागरिकों को निकालने का काम भी करती है। तो श्रोताओ, ये है हमारी भारतीय वायुसेना। आप बने हुए हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो गुंजन। और अब कार्यक्रम में सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। हाईवे फिल्म से ये गीत है श्रोताओ, और गाया है गीत को AR रहमान का संगीत है और नूरान सिस्टर्स द्वारा ये गीत जो है वो गाया गया है।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब पोषण की बात कर लेते हैं श्रोताओं। राष्ट्रीय पोषण माह जो है वो चल रहा है और इसमें हम रोज़ ही कुछ ना कुछ आपके साथ साझा करते हैं और सामान्य सी सिंपल सी भाषा में आपके साथ बस यही कहना चाहेंगे कि पोषण जो है वो एक दिन या एक महीने की जिम्मेदारी नहीं है हमारी। हमारा रोज का जो खान पान है उसमें पोषण जो है वो होना चाहिए और सारे पौष्टिक तत्व जो हैं वो भोजन में सम्मिलित होने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि पोषण में कुछ कमी है, हमारे खान पान में किसी चीज़ की कमी रह गई है, तो फिर सप्लीमेंट्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के आप इसके बारे में सर्च या रिसर्च करके जान सकते हैं जानकार लोगों से कि कुछ समय तक अगर आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो आप उनका भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए। और बाकी जो हमारा आहार होता है उस पर ही हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसमें जो भी है हमारे सब्जियाँ हैं, दूध और दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ और प्रोटीन के लिए अगर आप मांसाहार का सेवन करते हैं, श्राद्ध चल रहे हैं आजकल, कई श्रोताओं को शायद ये बुरा लगे, लेकिन जो सेवन करते हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि आप मांस मछली अंडे खासकर एक सही जो एक क्वांटिटी होती है उसमें उसका सेवन कर सकते हैं। और अगर नहीं करते तो प्रोटीन रिच जो फूड होते हैं उनका ज़रूर सेवन कीजिए। और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स और जो भी शरीर के लिए हमारे पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत होती है उनको भोजन में ज़रूर सम्मिलित कीजिए। कई बार हम भोजन को जो है वो खाने को स्किप भी कर देते हैं, ये भी सही नहीं होता है। अगर आपको खाना स्किप करना है तो बिल्कुल स्किप मत कीजिए, खाने की क्वांटिटी कम कर दीजिए, लेकिन क्वांटिटी कम करने के चक्कर में उसके जो पोषक तत्व हैं उनके साथ आप जो है वो खिलवाड़ मत कीजिए। हमारा खाना जो है वो कम हो बेशक क्वांटिटी, लेकिन उसमें जो पोषक तत्व हैं वो ज़रूर सम्मिलित होने चाहिए। और पकाते समय भी बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको हमें ओवर कुक नहीं करना होता है, तो ये सारी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। और इन शॉर्ट यही कहेंगे कि अपने खान पान घर का खाना खाएं, पौष्टिक खाना खाएं, और छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को पोषण की ज़रूरत होती है। सब अपने अपने खाने का ख्याल रखें, खासकर महिलाओं के ऊपर ही जिम्मेदारी होती है, लेकिन हम अपने लिए भी खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं श्रोताओं। अपने खाने का चयन हम ऐसा करें जिसमें सारे पौष्टिक तत्व मौजूद हों। और लीजिए अब आपके लिए पेश है कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं अब गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम आपके साथ बने हुए हैं लेकिन बहुत थोड़ा सा लिमिटेड सा समय बचा है और उस समय में हम आपसे यही कहेंगे कि बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी और जाते जाते आपसे विदा ले रहे हैं और आपसे यही कहेंगे कि ज़िंदगी जो है श्रोताओं बेहद खूबसूरत है। हर दिन ज़िंदगी एक नया मौका देती है ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने का, तो हर दिन शुक्रगुजार रहिए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए और यही कहिए ज़िंदगी के साथ हमेशा।

0: सर मेरा फ़ोन चोरी हो गया, आपका फ़ोन दे दीजिए सर प्लीज़, एक कॉल करना है सर प्लीज़ सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: मैं एक कॉल करूँगा सर पापा को बस सर प्लीज़ सर, फ़ोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फ़ोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक दिन के फ़ोन से फ़ोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है, ये लीजिए सर आपका फ़ोन, थैंक यू फ़ोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। फिर इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: इतने पैसे, माय,
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फ़ोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज़ करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जा रहे हैं ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे, और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर।
6: डॉक्टर?
3: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
6: वो किसी को भी हो सकता है।
5: और अगर हो गया तो बिना फूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो
5: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: तो याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या, किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियां भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। Stay tuned.

0: सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला।
1: तुम
0: बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने क्या?

91.2 मेगाहर्ट्स पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

0: सर मेरा फोन चोरी हो गया, आपका फोन दे दीजिए सर प्लीज, एक कॉल करना है सर प्लीज सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: एक कॉल करूँगा सर पापा को बस सर प्लीज सर, फोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक दिन के फोन से फोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है ये लीजिए सर आपका फोन, थैंक यू फोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। फिर इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: इतने पैसे, माय,
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे बुरबक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर।
6: डॉक्टर?
3: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
6: वो किसी को भी हो सकता है।
5: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो
5: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: तो याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या। किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियां भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। Stay tuned.

0: सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला।
1: बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने हैं क्या?

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो जी दोस्तों, और इस बदलते मौसम के साथ, बदलते खानपान के साथ बहुत सारी बीमारियां भी घर आती हैं, ये आप सभी जानते हैं। और अक्सर ऐसे में हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत रहती है, लेकिन सतर्कता कैसे आएगी, ये जानकारियां हम तक कैसे पहुंचेंगी, जब कुछ एक्सपर्ट्स लोग जो है हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ खास लोग जो है हमारे साथ जुड़ेंगे और आप सभी तक जो है वो जानकारियां पहुंचाएंगे। तो ये कोशिश रहती है रेडियो गुंजन धर्मशाला की दोस्तों की आप सभी तक एक छोटी से लेकर जो है वो बड़ी से बड़ी बात जो है वो आप सभी तक पहुंचे। तो आज अनुपमा संधल जी जो कि कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से हैं और उन्हीं से जो है हम बहुत सारी जानकारियां आप सभी तक पहुंचाते भी हैं, तो आज भी एक बहुत ही खास बातचीत लेकर आए हैं दोस्तों। तो आइए स्वागत करते हैं मैम का इस बहुत ही खास बातचीत में। मैम स्वागत है आपका हमारे रेडियो गुंजन धर्मशाला में।
1: थैंक यू
0: जी। तो जैसे कि हम बात करते हैं इस बदलते मौसम की ही अगर हम नजर डालें इस पे, और पोषण माह भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं साथ ही, लेकिन साथ ही हम बात करें जो आज के समय में हमारी जीवन शैली जो है वो एकदम से बदल चुकी है, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे वो बड़ों की हो, चाहे वो बुजुर्गों की हो, किसी की भी हो, हर कोई अपने रूटीन से ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक डिसबैलेंस चीजें जो है वो सामने आती हैं। तो मैम आपको क्या लगता है कि इस पे पहले थोड़ा सा हम नजर डालें कि हमारी जीवन शैली जो है ये आज के समय में किस तरह से चल रही है।
1: नमस्कार सभी को। आजकल की जीवन शैली हमारी जो है पिछले 10 साल पीछे जब हम जाएंगे तो उससे बहुत ज्यादा बदल चुकी है। एक हो गया है कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया। सीडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब है कि मतलब हमारा जो बैठने का समय है वो बहुत कम हो गया। चलना, सीढ़ियां चढ़ना, दौड़ना, ये सारी चीजें जो है हमारी, या जो जैसे कहते हैं ना फिजिकल शारीरिक कार्य करना, वो हमारा बहुत कम हो चुका हुआ है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारा खान पान
0: जी।
1: तो जो खान पान है जो हमारा कि वो एक तरीके से कहते हैं बहुत गड़बड़ हो गया हुआ है। तीसरा है हमारा समय,
0: बिल्कुल
1: जो है समय जो हम कहते हैं, एक हम बोलते हैं सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, जिसमें कि हमने अपना जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है ना उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया हुआ है। पहले जो होता था कि लोग सुबह उठते थे 5 बजे 6 बजे उठते थे, अपना पानी पीते थे, थोड़ा सा सैर करते थे, थोड़ी हल्का व्यायाम, जरूरी नहीं है कि बहुत कठोर या शारीरिक व्यायाम किया जाए, हल्का फुल्का व्यायाम, चलना दौड़ना, इस तरीके से भी काम चल जाता है। उसके बाद नाश्ता होता था, उसके बाद सब लोग अपने कार्यों पर, अपने जो कार्य क्षेत्र पे चले जाते थे, वहां पर जो लंच होता था वहां लंच चाहे साथ लेके जाते थे या वहां पर होता था, फिर शाम को आना, मतलब जो भी ये रूटीन होता था और होता था, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो रात्रि भोजन होता था वो होता था 8 से 9:30 तक के बीच में
0: जी।
1: आजकल वो सारी चीजें बदल चुकी हुई हैं। हमारा जो डिनर टाइम है, रात्रि भोज का समय है, वो 10, 11, 12 तक बजे तक भी चला गया है।
0: बिल्कुल।
1: और खासकर हमारी जो युवा पीढ़ी है वो सबसे ज्यादा ग्रसित है इससे, क्योंकि युवा पीढ़ी का जो सोने का समय है, जो हमारा पहले सोने का समय होता था 10 से 11 बजे के बीच में होता था, आजकल हम कह सकते हैं जब जिसका डिनर टाइम ही 12 बजे है, 1:30 बजे है, तो उनका सोने का समय कहाँ चला जाएगा। जिस समय हम बात कर रहे हैं कि 5 बजे उठने की, वो लोग 4 बजे सोने जा रहे हैं। तो एक तरीके से हमने क्या किया कि जो हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक थी ना वो एकदम से डिस्टर्ब हो चुकी हुई है। जिस समय हमें जगना चाहिए उस समय वो सोने जा रहे हैं, और जिस समय उसको सोना चाहिए उस समय वो जगे हुए हैं पूरी तरीके से। तो उससे क्या है कि हमारा जो शरीर है उसमें एक तरीके से असंतुलन हो चुका है, क्योंकि जो शारीरिक क्रियाएं हमारी अंदरूनी चलती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, चाहे वो भोजन पचाने का कार्यक्रम काम है जो हमारी जो यंत्रिका है वो करती है, उससे रिलेटेड बाकी चीजें होती हैं, वो सब चीजें डिस्टर्ब हो चुकी हैं। जीवन शैली जो है डिस्टर्ब होने से क्या हुआ कि बहुत सारी बीमारियों को हमने आमंत्रित कर लिया हुआ है
0: जी।
1: तो आजकल जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत ही पहले क्या होता था, सबसे बड़ी बीमारी जो सबसे मशहूर कह सकते हैं हम डायबिटीज, तो डायबिटीज होती थी, पहले माना जाता था कि 42-45 साल की उम्र के बाद होगी या ज्यादातर होता था 50 साल की उम्र के बाद। आज की जो डायबिटीज है वो यंग जनरेशन में हो रही है। बच्चों में जो बीमारी डायबिटीज की हो रही है वो अलग तरीके की, जो टाइप 1 डायबिटीज हम बोलते हैं, वो इंसुलिन सिक्रीशन डिस्टर्ब हो जाता है उसके कारण होती है। लेकिन जो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है, यंग जनरेशन में हो रही है डायबिटीज, वो क्या मतलब आप सोचिए कि उनका इतना शुगर लेवल हाई है कि वो उनको पता ही नहीं है कि कैसे खत्म करना है। मुख्य कारण क्या है कि जो हमारा खाना है उसमें ज्यादातर हमारे रिफाइंड सीरियल जिसको हम बोलते हैं, रेडीमेड चीजों के ऊपर हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा है। ब्रेड खाएंगे, नूडल्स खाएंगे, इस तरीके की चीजें, तो उसमें 3 तरीके के नुकसान करने वाले तत्व हैं, भोजन तत्व हैं, वो हैं जैसे रिफाइंड सीरियल, जैसे हम कह रहे हैं मैदा है? तो मैदा में कोई पौष्टिकता नहीं है, सिर्फ वो एक एनर्जी का सोर्स है। रेडी टू प्रिपेयर फूड जो 2 मिनट में 10 मिनट में खाना बन जाए, तो ऐसे भोजन में क्या होगा, हमेशा नमक या चीनी ज्यादा होगी। तो जितनी हमारी शरीर की जरूरत है उससे ज्यादा हम नमक और चीनी ले रहे हैं, तो चीनी ज्यादा लेने से, और फिर दूसरी बात जो हमने पहले करी कि हमेशा बैठे रहना, कोई भी आपने यंग जनरेशन में बच्चा नहीं देखा होगा जो स्कूटी के बिना नहीं चलता। आप सोचो घर के बाहर की गेट से लेके अगर पास में 2 दुकान छोड़ के भी उसका जाना हो तो उसने स्कूटी पे ही जाना है ना। तो मतलब क्या है कि हमने इतना भी चलना छोड़ दिया, तो जो हमने एक्स्ट्रा या जो भी ऊर्जा हमने एक्स्ट्रा ली है वो शरीर में इस्तेमाल ही नहीं हो रही, तो क्या है वो जमती जा रही है, मतलब वो स्टोर होती जा रही है हमारे शरीर में, और उसके परिणाम स्वरूप क्या है, या तो युवाओं में डायबिटीज की बीमारी आ रही है, या सबसे जो पॉपुलर है वो है मोटापा। फिर हम परेशान हो जाते हैं कि मोटापा आ गया, अब इसको कैसे खत्म किया। और मोटापा जब आता है तो उसके साथ और बहुत सारी बीमारियां आती हैं, तो जो एक ये है ना। फिर अभी जैसे मैंने आपको बोला कि नमक ज्यादा है ना, तो नमक जब भी ज्यादा होगा तो नमक ज्यादा होने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हाइपरटेंशन है ना। तो हाइपरटेंशन बढ़ने से क्या, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने, जब भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा तो हमारा जो हृदय है सही ढंग से काम करेगा, लेकिन ब्लड प्रेशर मतलब धमनियों में जब खून का प्रवाह तेजी से होगा, ज्यादा होगा जितना प्रेशर चाहिए, तो क्या होगा, हमारे दिल को भी ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, और हम आमंत्रित करते हैं दिल संबंधी हृदय रोगी कंडीशंस को। उसके बाद आता है कि जो ओबेसिटी जैसे मोटापा तो हमने बात कर ही लिया
0: जी।
1: उसके बाद क्या है कि जब भी डायबिटीज होगा या दिल से संबंधित बीमारियां होंगी तो उसका बहुत बुरा असर पड़ता है हमारी किडनी पे। तो किडनी पे जब बुरा असर पड़ता है तो बहुत जल्दी जो है लोगों में किडनी खराब होने की बीमारियां दिख रही हैं। और सबसे बड़ा जो कारण है, हम एडवांस हो गए हैं बहुत ज्यादा, हमारा जो स्क्रीन टाइम है बढ़ गया है।
0: बिल्कुल,
1: चाहे वो मोबाइल पे है, चाहे लैपटॉप पे है, चाहे आपके डेस्कटॉप के ऊपर है, कहीं पर भी है, तो कोई भी चीज, कुछ भी नहीं है तो टीवी के सामने बैठे हुए हैं। तो जो स्क्रीन टाइम बढ़ने से क्या है कि जो मानसिक तौर से जो युवा हैं, जो हमारे जिसको हम कहते हैं ना एंग्शियस है, एंग्जाइटी है, उनमें उत्तेजित रहते हैं हमेशा, गुस्सा है उनमें बहुत ज्यादा है, तो गुस्सा होने से अपने में मानसिक स्थिरता नहीं है, साथ साथ जो हमने पहले बीमारियां डिस्कस करी उनको वो इनवाइट करते हैं। तो ये जो है हमारी जो नई जीवन शैली है, तो इसलिए इनको हम लाइफस्टाइल डिजीजेस या जीवन शैली आधारित बीमारियां भी बोलते हैं, या हम इनको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसा नहीं है कि मुझे है एक बीमारी तो आप मेरे साथ बैठे हैं तो आपको हो जाएगी, मेरे लाइफस्टाइल से मेरे को होगी और आपके लाइफस्टाइल से आपको होगी, इसलिए इनको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। एक दूसरे से नहीं लगेगी, जो आपका रहने का तरीका है उसी से लगेगी। तो ये इसमें समस्या है हमारी नई जीवन शैली में
0: जी। तो बिल्कुल दोस्तों, आप सभी ने देखा कि वाकई में जीवन शैली तो हमारी बिल्कुल बदल चुकी है, और ये जो छोटी सी उम्र में बच्चों को नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं, क्योंकि पहले तो सुनने को मिलता ही नहीं था छोटी उम्र में बीमारियों का नाम, और बड़ों में भी बहुत कम मिलता था क्योंकि खान पान उनका सही होता था उस समय में, बाहर का खाना जो था वो अवॉइड ही करते थे ज्यादातर। तो ऐसी चीजें जो है हमारे सामने आती हैं, इस तरह की चीजें सामने आती है, तो और भी इसमें हम नजर डालेंगे और भी हम मैम से जानेंगे कि किस तरह से इन्हें कम किया जा सकता है या अपने खान पान पे ध्यान दिया जा सकता है। फिलहाल लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं आप सभी के साथ इस खास बातचीत के साथ।

0: जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज या कल पता नहीं क्या हो जाएगा, तो हम अपने खाने को क्यों छोड़ें जो हम खा लेते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जी, खाने को छोड़े नहीं बट खाने को सुधारें।
0: जी,
1: जैसे अभी हमने किया कि जैसे डायबिटीज की हमने बात की, यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा इसकी है, और आपको हैरानी होगी कि WHO ने बोला है कि 2030 के बाद सबसे ज्यादा जो डायबिटीज के मरीज होंगे वो भारत में होंगे, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो डायबिटिक मरीज होंगे वो होंगे यंग जनरेशन, मतलब जो 35 साल से कम उम्र के लोग होंगे। तो मतलब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है कि भी हम कैसे कर सकते हैं। तो डायबिटीज होने का मुख्य कारण है कि जो हम रिफाइंड सीरियल्स जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम आटा लेते हैं, ठीक है आजकल लोगों के पास समय नहीं है, हम लोग बाजार का आटा लेते हैं। आप कोशिश करिए कि उसको मिला जुला के आटा जो है इस्तेमाल करें। अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो सिंपल उसमें जैसे एक कटोरी आपने गेहूं का आटा लिया तो उसमें एक मुट्ठी जो है बेसन मिला दो। रागी का आटा है बाजार में अवेलेबल है, सोयाबीन का आटा है वो अवेलेबल है, मतलब इस दो तीन तरीके की चीजें, और हमेशा जो है हर हफ्ते आप बदल दो, मतलब एक हफ्ते आप रागी का आटा ले लो, एक हफ्ते आप बेसन डाल दो या चने का आटा ले लीजिए, है ना, एक हफ्ते आप सोयाबीन का आटा, इस तरीके की चीजें, और भी जो भी आपके पास है जैसे जौ का आटा है, इस तरीके की चीजें आप कर सकते हो। तो उससे क्या है कि हमें चाहिए होता है, जो हमने कार्बोज की बात करते हैं ना, तो जो हम सिर्फ आटा बाजार का खाते हैं तो उसमें जो है एक तरीके से वो गुण नहीं है जो हम घर के पीसे गेहूं के आटे में होती है। तो हमें चाहिए वो कार्बोस जो धीरे धीरे हमारा जो खून में चीनी की मात्रा को बढ़ाए, मतलब डाइजेस्ट धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे वो पचेगा। लेकिन जब हम सिर्फ आटा का खासकर बाजार वाला खाते हैं तो उसमें सिवाय स्टार्च के कुछ नहीं होता, तो वो सिर्फ हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा। तो जब हम ये चीजें मिला देते हैं, या हम जैसे कहते हैं ना मोटा पीसा हुआ आटा, गेहूं का जो घराट में पीसा हुआ आटा जब अगर हमें से, तो उसमें क्या होता है गेहूं का छिलका भी साथ में, जो बारीक सा छिलका होता है ना वो भी साथ में आता है, तो वो क्या करता है धीरे धीरे, मतलब वो एक उसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, तो फाइबर की मात्रा होने से क्या होता है कि वो डिले होगा, डाइजेशन जो है डिले होगा, तो वो क्या है आपका जो शुगर का लेवल है बढ़ाएगा नहीं, और पेट आपका जल्दी भरेगा। नेचुरली आप जब फाइबर की मात्रा ज्यादा खाएंगे तो जहां पर आप रिफाइंड आटे से 3 या 4 रोटी खाएंगे तो वो आप 2-2.5 में ही आपका पेट भर जाएगा।
0: जी।
1: दूसरा आप इसमें कर सकते हैं कि ताजी फल और सब्जियां, महंगे फल और सब्जियां लेने की कोई जरूरत, जो भी आपकी मौसमी फल और सब्जी, जैसे आजकल घिया है, कद्दू है, खीरा मिल रहा है, ये सारी चीजें मिल रही हैं, अमरूद है, सबसे ज्यादा विटामिन सी है उसमें, है ना, तो ये सारी चीजें जो है आपके आहार में होनी चाहिए। दूध या दूध के बने पदार्थ, जो लोग दूध पीना नहीं पसंद करते, दही रोज खाइए, दिन में 2 बार आपको 2 कटोरी दही जरूर होना चाहिए, तो वो चीजें जो है आपके अपने आहार में शामिल करें।

0: दूसरी हमने बीमारी की बात करी थी जो वजन बढ़ जाता है, तो वजन भी इसी कारण से। थोड़ी बहुत लाइट एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, चलना फिरना, तो उसमें भी कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं कि एक तो ये है कि जो भी आपने खाने का समय रखा हुआ है कम से कम आप उसको नियम से उसी समय पर रोज खाना
1: फॉलो करें।
0: जैसे हमने पहले बात करी थी कि बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना, वो सेट हो जाती है। आपने देखा होगा कि अगर आप 1:30 से 2 के बीच में खाना खाते हो ना, किसी दिन हम लेट हो जाते हैं काम करने पे, तो 1:30 बजे अगर हम अपना टिफिन खोल लेते हैं या खाना लगा के बैठते हैं, तो आपको 1:30 बजे जरूर एक बार अंदर पेट में लगता है कि नहीं मेरे को भूख लग गई है। हाँ, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना, नहीं तो क्या होता है आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। तो एक तो ये है कि 4 से 6 घंटे से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए दो खानों के बीच में। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि जो डिनर है आपका रात्रि खाना है, वो आपका कम से कम 9-10, मतलब वो हिसाब इसलिए है कि डिनर करने और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, खाया और तुरंत सो गए, तो वो सबसे गलत आदत है, क्योंकि वो इन चीजों को बढ़ावा देता है, जैसे मोटापा है, डायबिटीज है, इन चीजों को। फिर है कि जब आप खासकर रात का खाना, क्योंकि रात के बाद शाम को के बाद हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है, तो रात के बाद आप ये सेट रखो कि रात का खाना खाने के बाद कुछ, चाहे घर के अंदर कमरे के अंदर 15-20 चक्कर, मतलब कुछ कदम आपको 100 कदम चलने ही चलने हैं, ताकि वो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो सही करेगा, तो खाना जो है ढंग से पचेगा और जहां पर उसका इस्तेमाल होना है वो होगा। तीसरी बीमारी हमने बात करी थी हाइपरटेंशन और उससे रिलेटेड उसी से हृदय संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हमारे लिए 5 ग्राम पूरे दिन में प्रति व्यक्ति 5 ग्राम नमक रेकमेंडेड है। तो हमें वो चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि सुबह से लेकर रात तक आप जो कुछ भी खा रहे हैं, जब एक आदमी का नमक आप जोड़ें तो 5 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रेकमेंडेड 5 ग्राम है और हम जाते हैं 10 से 15 ग्राम में, तो आप सोचिए ना कि वो जो धमनियां हैं, जो रक्त, जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है, उसके ऊपर कितना असर पड़े, कितना वो बियर करेगा, तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो हाइपरटेंसिव हो जाता है पेशेंट। और थोड़ा सा मैं ये भी कहूंगी कि थोड़ा सा हल्का व्यायाम या मेडिटेशन बहुत जरूरी है, उससे क्या होता है कि हमारा जो माइंड है रिलैक्स भी होता है और अंदरूनी फायदे तो होते हैं। फिर आता है हमारा जो हमने बात करी थी स्क्रीन टाइम इंक्रीज होने से, तो ठीक है वो हमारा कार्य क्षेत्र में हमारा काम है वो करना, लेकिन आपको ऐसे रखना चाहिए कि हर 1 घंटे के बाद, नॉर्मली लोग ये बोलते हैं जितने भी जगहों पर आप बात करें वहां पर ये बोला जाता है कि जैसे आपने 1 घंटे कंप्यूटर के मॉनिटर पे काम किया, तो आपको चाहे उसी कमरे में 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक आप घूम लो, फिर बैठ जाओ, फिर काम ऐसे करो, मतलब ब्रेक करना, जो एक कहते हैं ना मोनोटनस ब्रेक करना या एक रूटीन को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि क्योंकि हम एक

0: सारा पानी, तरी वाली सब्जी खाते हो वो सब इंक्लूडेड है, तो इतना पानी आपको पीना ही चाहिए। तो मैंने ऐसे देखा है कि यंग जेनरेशन है जो हमारे युवा हैं और बहुत सारे बुजुर्गों में भी है कि वे पानी नहीं पी पाते हैं
1: जी,
0: 2 या 3 गिलास। तो आप सोचिए ना कि गिलास जो है 200 से 250 ml, इससे बड़ा नहीं होता। तो हम 1 लीटर भी नहीं पहुंच पा रहे उसमें, चाहे हम दाल में डाला हुआ पानी भी मिलाएं, तरी वाली सब्जी जो कुछ भी आप मिलाएं, तो हम 1 लीटर, जबकि आपकी कम से कम जो जरूरत है वो 2 लीटर की तो है ही है, अगर 3 लीटर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो कम से कम आप पानी का इंटेक 2 से 2.5 लीटर। उसमें एक दूसरा लाभ ये भी रहता है कि जो आपने मान लो कि एक्स्ट्रा नमक खाया है, चटनी अचार ऐसी भी चीजें खाई है, तो अगर वो 5 ग्राम से एक्स्ट्रा नमक है तो वो पेशाब के जरिए बाहर निकल जाएगा जो फालतू नमक है, क्योंकि जितना आपके शरीर में इस्तेमाल होना है उतना होगा और बाकी सब जो है छनने के लिए किडनी तक चला जाएगा, तो किडनी पे भी असर इसका ज्यादा पड़ता है। तो जो जितनी भी हम कहते हैं ना कि फालतू का खा रहे हैं, उसका असर हमारे हार्ट पे, दिल पे, हमारी किडनी पे, इन पे ज्यादा पड़ रहा है। बाकी पाचन शक्ति जो हमारी जो पाचन जो तंत्रिका है उसके ऊपर तो पड़ ही रहा है, बट ये जो दो हमारे जो ऑर्गन है उनके ऊपर भी बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है।
1: जी दोस्तों, तो खान पान के साथ देखिए, जहाँ खाना इम्पोर्टेंट है वहाँ पानी भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम पानी प्रॉपर मात्रा में नहीं पीते हैं तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां जो है वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकती हैं। तो जरूर इस बात का ध्यान रखिए, खास करके हम बात करें तो बरसात के मौसम में या सर्दियों के मौसम में हम पानी की मात्रा को थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है हमें पानी की क्वांटिटी जो है वो प्रॉपर मेंटेन करके रखना बेहद जरूरी, चाहे वो गर्मी है, चाहे वो बरसात है, चाहे वो सर्दियों का मौसम है। तो जरूर इस बात पे हम एक बार फिर से वापस आएंगे, लेकिन एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: 291.2 MHz पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और बहुत ही खास बातचीत आज के कार्यक्रम में आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। उस मौसम के हिसाब से हमारे जो खाने की चीजें होती है वो बदलती हैं, हमारे जो स्वाद होता है वो बदल जाता है। बरसात के मौसम में कुछ तला हुआ ज्यादा खाने का मन करता है, तो सर्दियों के मौसम में भी अलग तरीके, मतलब अलग अलग डिशेज का जो है एक अलग अलग पैटर्न रहता है। लेकिन जैसे मैम ने कहा कि सीजनेबल्स जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, जो हमारी सब्जियां होती हैं, तो जो जिस तरह से हम और खानों पे डिपेंड हो जाते हैं, तो उसी तरह से हमें इन चीजों को भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर को जो है एक तरह से बैलेंस रखा जा सके। मतलब जो भी प्रॉपर मात्रा में चीजें मिलनी चाहिए वो मिलती रहे। तो मैम, जैसे कि हम अक्सर, अभी आपने बात की थी कि जो हमारा खाने का जो एक ब्रेक होना चाहिए वो 4 से 6 घंटों के ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये मैं ये कहना चाह रही थी कि ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सेम रहता है या बच्चों के लिए अलग से है, बड़ों के लिए अलग से, बुजुर्गों के लिए अलग से?
1: नहीं, बच्चों के लिए, जैसे बच्चों के लिए है ऐसे कि बढ़ते हुए बच्चे हैं तो उनको बीच में आप दे सकते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो एक मिड मॉर्निंग आता है उसमें आप उनको कोई फल और रिश्ते, इसी तरीके से जैसे बुजुर्ग हैं या किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो उसमें भी हम डाइट शेड्यूल बदल सकते हैं। जैसे किसी को पेट में जलन की समस्या है, ठीक है, इस तरीके की समस्या आती है तो उनको क्या है, थोड़ा थोड़ा भोजन खाना देना पड़ता है, तो लेकिन भूख तो लगती है ना, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि बीच में
0: थोड़ी थोड़ी देर के बाद,
1: 2 से 2.5 घंटे बाद उनको, 2.5 से 3 घंटे बाद उनको इतना थोड़ी मात्रा में कोई ना कुछ हल्का फुल्का देते रहना चाहिए।
0: जी, तो बिल्कुल। तो अब आते हैं मैम कि जैसे हम देखते हैं कि आज के समय में बच्चों की बात करें या बड़ों की बात करें, तो हर कोई जो है अपने मतलब कि घरों में तो रहते नहीं है, क्योंकि शिक्षा भी बहुत ज्यादा जरूरी है, कोर्सेज करने होते हैं, बच्चों को अपनी सेटलमेंट देखनी होती है, तो हम कहीं बाहर जो है वो कोर्सेज के लिए निकलते हैं या फिर जॉब के लिए कहीं बाहर निकल जाते, क्योंकि गांव में हर चीज अवेलेबल तो नहीं हो पाती है। तो वहां हम आजकल ये भी देखते हैं कि ज्यादातर हम थोड़ा, जैसे हम काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि जैसे आपने कहा कि 9-10 भी बज रहे हैं, शाम के 11 भी बज रहे हैं, सुबह 8 बजे निकल कर जा रहे हैं, मतलब प्रेशर हमने अपने ऊपर इतना ज्यादा ले लिया होता है, तो वहां भी एक खाने की शेड्यूलिंग कहीं ना कहीं बिगड़ जाती। तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करते हैं बाहर का खाना, ये जंक फूड वगैरह या फिर पैक्ड फूड, जो आपने जैसे बताया कि जो 2-3 मिनट में बन के रेडी हो जाता है, तो उस पे हम थोड़ा सा नजर डालते हैं।
1: जी, ये रहता है, जैसे हम कहते हैं इंस्टेंट फूड या जंक फूड्स कहते हैं, तो जंक फूड्स में जैसे आता है कि कितने सारे युवाओं को, बच्चों को देखा कि चपाती नहीं खाएंगे, मतलब खाना नहीं खाएंगे तो दे विल परचेज, वो एक चिप्स का पैकेट खरीद लेंगे और उसी से उनका पेट भर गया। बिस्किट की ये भी परिभाषा बदल गई है आजकल, बिस्किट आ गई है क्रीम वाले जो बिस्किट होंगे जैसे, तो मतलब अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हर समय क्रीम वाला बिस्किट तो उतनी ही हम चीनी की मात्रा हम ज्यादा ले रहे हैं, जबकि वो हमारी शरीर की जरूरत नहीं है। तो मतलब बच्चों को, युवाओं को, इन सबको इतना जागरूक होना चाहिए कि कभी कभी तो ठीक है जब आपने स्वाद लेना है या कुछ, ठीक है, लेकिन रूटीन में जब हम लेते हैं तो वहां पर आप चीजों को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप बजाय इसके कि बिस्किट लें, नमकीन लें, इस तरीके की चीजें, आप कोई भी फल जो हमारा मौसमी फल है वो काट के, किसी को भी बना खाने में ज्यादा, जैसे केला है, अमरूद है, इनको काटने में कोई समस्या नहीं है। आजकल सेब आ गए हुए हैं बाजार में, रीजनेबल रेट में है, तो वो भी ले सकते हैं। तो जो भी हमारे पास फल है उनको खाइए। दूसरा तरीका क्या है, जैसे हम लोगों के घरों में पहले क्या होता था, लूंगी हुई दालें खाई जाती थी, जर्मिनेटेड जो इतने भी हैं वो खाए जाते थे। जर्मिनेशन बहुत इजी है, एक बार आप 5-6 घंटे के लिए भिगो दीजिए हरी मूंग की दाल को, काले चने को, अलग अलग, इन रखना सबको अलग अलग है, इनको आप भिगो दीजिए और फिर आप चाहे तो आप सूती कपड़े में बांध के ऊपर टांग दीजिए और उसको कपड़े को बीच बीच में गीला करते रहें, तो जो मूंग की दाल है उसमें तो 6-7 घंटे में आ जाती है, अंकुरीकरण हो जाता है। काले चने को थोड़ा टाइम लगता है, तो काले चने में 10-12 घंटे में आ जाता है। तो इनको आप अगर वैसे खाना चाहते हैं तो आप वैसे भी खा सकते हैं बिना कुछ मिक्स किए, और थोड़ा स्वाद बनाना चाहते हैं तो उसमें कच्चा जो टमाटर और प्याज काट के और चाट टाइप का हल्का बना
0: बिल्कुल
1: लीजिए और खीरा वीरा सब, सो दैट कि उसका वॉल्यूम बन जाए तो, और वो पौष्टिक भी रहेगा। इस तरीके की चीजें, रोस्टेड मूंगफली ले लीजिए, नमक मत डालो एक्स्ट्रा ना, सिंपल आप लीजिए रोस्टेड मूंगफली है, इस तरीके रोस्टेड चने, भुने हुए चने, ये सारी चीजें। अलसी खाते थे लोग,
0: जी
1: अलसी इतनी आजकल जो है सुपर फूड कहा जाता है अलसी को, क्योंकि या ये भी एक है जैसे मोटापा, और इसकी तो डायबिटीज की हमने बात की है, घुटनों में दर्द यंग लोगों को, युवाओं को होने लग गया, चल कमजोर हो रहे हैं उनके, तो उनको अलसी चाहिए। अलसी 1 चम्मच अलसी का आप एक नियम रखो कि आते जाते अपने टेबल के पास रख लो, अपने ऑफिस के ड्रॉअर में एक डब्बी, छोटी डब्बी में रख लो, तो 1 चम्मच के करीब चाहे वो बढ़िया रहेगा कि अगर आप उसको हल्का सा भून लें, बहुत ज्यादा नहीं भूनना, हल्का सा, ताकि वो जो उसमें क्रंचीनेस रहती है ना अलसी में वो बनी रहे। तो अलसी और तिल का मिक्सचर बना लो आप उसमें। तो ये सारी चीजें हैं जो हम अपने डेली डाइट में, इससे क्या होगा हम अपने आप ही दूर हो जाएंगे इन चीजों से जो है, बिस्किट खा रहे हैं हम, नमकीन, मतलब आप एक कभी कभी खाना ठीक है, बट एक आप अपने आहार का हिस्सा बनाए ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात करी कि एक तो सबसे बड़ी बात है इसमें रिफाइंड होता है, रिफाइंड सीरियल है ना ये, चाहे इसमें मैदा होगा, सफेद चावल जो पॉलिश राइस है वो यूज हो रहा है, ये सारी चीजें, प्लस क्योंकि ये ज्यादा टाइम के लिए रखा जाता है तो इसमें हमेशा नमक या चीनी की मात्रा जो भी होगा प्रोडक्ट वो ज्यादा होगी, तो वो हम फालतू ले रहे हैं, तो उन चीजों को कम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो घर में आप बहुत सारी चीजों को बना सकते हैं, और ये जो चीजें हमने बताई इनमें कोई बहुत समय नहीं लगने वाला, अंकुरीकरण करके रख दीजिए, एक कटोरी में आप निकाल के अंकुरित अनाज को खा लीजिए, इस तरीके से चीजें, और उसमें विविधता भी आ जाएगी।
0: जी बिल्कुल दोस्तों। और मैम जैसे कि हम बात करें ना अपने इस पहाड़ी इलाके की, हम वैसे भी पहाड़ी लोग हैं, तो जैसे पहले के समय की अगर हम बात करें, बुजुर्गों की बात करें, तो बहुत चाव से जो है खेती की जाती थी, और चाहे महीने लग जाए तो बहुत मतलब प्यार से एक दूसरे के साथ मिलके जो है वो काम भी किए जाते थे, और घर की चीजें जो है वो ज्यादा उगाई जाती थी, चाहे वो दालें हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं ना कि हम पैसों के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, और ये जो नेचुरल चीजें हैं इन पे हम ध्यान, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हम इन्हें खेती कर तो रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि सिर का बोझ उतारना, वो वाली चीज जो है हमें आजकल ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है। और अगर हम सब्जियों की बात करें तो वही पैसों की बात करें तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पैसे कमाने के चक्कर में सब्जियों को इंजेक्ट करके जो है वो भी सेल करते हैं, तो वो भी हमारे लिए,
1: तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि इंजेक्ट वाले का तो पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो तो कृषि विशेषज्ञ ही पकड़ सकते हैं, लेकिन बाकी ये है कि जो भी सब्जियां फल जो भी आप बाजार से खरीदें, आप उसको जब खाना हो या जैसे भी या हमेशा ये रख, जैसे कोविड का समय जब था तो लोग क्या करते थे, बहुत सारे लोग करते थे कि पानी कोसा कर लेते थे, कोसे पानी में नमक डाल देते थे, 1% 0.5 से 1% तक नमक डालते थे, और उसमें 15-20 मिनट सब्जियों को भिगो देते थे, और उससे क्या होता था कि क्योंकि जैसे आपने बोला ना कि मुनाफा कमाने के लिए लोग बड़ा कुछ करते हैं, इंजेक्शन तो दे ही रहे हैं वो है ही है, उसको हम नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन यह है कि उसमें यह कर सकते हैं कि जो आपका सोर्स हो जहां से आप लेते हैं वो विश्वसनीय होना चाहिए, थोड़ा हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा ये है कि जैसे मैंने बोला कि पानी, थोड़ा गर्म पानी करके और उसमें नमक डाल दीजिए, और उसमें सब्जियों को 10 से 15 मिनट तक रख दीजिए, और फिर उसको निकाल के जाली वाली टोकरी में रखो, और फिर आप उसको इस्तेमाल करते रहिए, तो उससे क्या होगा कि जो पेस्टिसाइड उनके ऊपर स्प्रे होते हैं उनका असर भी कम हो जाता है, उनका मतलब निकल जाते हैं। धोना बहुत जरूरी है, और दोनों तरीके से फायदेमंद है, पेस्टिसाइड वाला रेजिड्यू भी खत्म हो जाएगा, और जो खेतों की मिट्टी लगी होती है जिसमें नुकसानदायक बैक्टीरिया हो सकते हैं तो उनसे भी हमें छुटकारा, और साफ सुथरी सब्जियां होंगी जो होंगी। और मौसमी फल का मतलब ये है कि जिस समय में जो सब्जी और फल होता है उस समय एक तो उसका रेट भी ज्यादा नहीं होगा, और क्योंकि वो मौसम की डिमांड है, तो जिस समय जौन सा आपको खान पान चाहिए उसके हिसाब से ही कुदरत ने सब्जी और फल का भी मौसम बनाया हुआ है। तो ऑफ सीजन में जाने की जरूरत नहीं है, आप जो आपकी मौसमी फल सब्जी हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी होना बहुत अच्छी
0: पॉसिबल
1: रहेगी। इसी तरीके से मोटा अनाज जो भी हमारी एरिया में लगाया जाता है, ठीक है, तो वो जो अनाज है वो उसको हम अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। जैसे बहुत जैसे सिउल है, बहुत आसान, व्रत में तो हम जरूर खाते हैं सिउल की खीर, तो आप रूटीन में भी सिउल का खीर और रायता बना सकते
0: जी
1: हैं। अभी सर्दियां आ रही हैं तो उसमें हल्का जैसे लड्डू होते हैं उसके बने हुए, वो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, तो उनको जब हम उनको लेके नहीं आएंगे तो उनको टेस्ट भी नहीं डेवलप होता, पता ही नहीं होता उनको,
0: बिल्कुल
1: तो उनको तो बस वो चॉकलेट और जेली ही पता है ना। तो ऐसी चीजों के ऊपर हम जैसे गचक है, इस तरीके की चीजें हैं, इनके ऊपर हम उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि हेल्दी भी होते हैं, और इसमें नट्स होने की वजह से उनकी प्रोटीन की जरूरत है और मिनरल्स हैं, इनकी जरूरत भी पूरी होगी।
0: जी दोस्तों, तो आप सभी ने जाना है कि किस तरह से जो है हमारा खान पान रहता है और अक्सर हम कितना ध्यान देते हैं और नहीं भी देते हैं। अगर नहीं देते हैं तो देने की जरूरत है, क्योंकि स्वस्थ रहना हर इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम खुद स्वस्थ होंगे तभी हमारे अपने अपने साथ होंगे, अदरवाइज तो फिर सभी ऐसे मुंह मोड़ते हैं और पीछे से पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, हेल्थ जो है, एक ही बात बोलेंगे कि हेल्थ जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और खान पान अगर हम सही तरीके से करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। अगर हम थोड़ा सा भी खान पान को डिसबैलेंस करते, जिस पैसे कमाने के लिए हम ये खान पान बिगाड़ रहे हैं, अगर वो पैसा हेल्थ के लिए लग जाएगा तो फिर उस कमाने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। तो मैम, जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दोस्तों को?
1: अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने खान पान और अपना जो सिस्टम है उसको सही रखें, समय पर जागें, समय पर सोएं, थोड़ा ये रूटीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और जो हमारे जो लोकल खाने हैं, जो भी रेसिपीज भी कह सकते हैं हम, उनको अपनाएं और उनको अपने आहार में शामिल करें। वो
0: जी
1: हेल्दी भी हैं और लोकल होने की वजह से सबसे बड़ी बात है कि वो फ्रेशली अवेलेबल होंगे, तो उसमें कोई एडिटिव नहीं होगा, कोई जो भी उसको लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन नहीं किया है, तो उसमें जो भी पौष्टिकता होगी वो जेन्युइन होगी, सही होगी।
0: जी
1: तो लोकल फूड को अपने आहार में शामिल करें और सही खाना खाएं और सही समय पर खाना खाएं।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, तो आज हमने बात की है जीवन शैली आधारित बीमारियों की और कैसे उससे बचा जा सकता है अपने खान पान को सही करके। तो आज की हमारी बातचीत में जुड़े थे डॉक्टर अनुपमा संधल जी। तो दोस्तों, बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश थी और उम्मीद करते हैं कि ये कोशिश हमारी कामयाब हुई होगी, और नहीं हुई होगी तो धीरे धीरे आप इसे अपने जीवन में जरूर कामयाब करेंगे। तो फिलहाल समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को, और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी भी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन, धर्मशाला गूंज अपने पन की।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है। उन्होंने कहा कि इस मंच ने दूरसंचार क्षेत्र में भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMT को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने की सुविधा दी है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रसार तभी हो सकता है जब वो किफायती और समावेशी हो। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में GST विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव विविधता, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौते किए। भारत ने आगामी 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 में महत्वाकांक्षी और संतुलित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लचीलापन, व्यावहारिक दृष्टिकोण और आपसी सम्मान की आवश्यकता पर जोर दिया है। सम्मेलन से पहले फिजी में आयोजित एक बैठक के दौरान राजनीतिक समझौते के संभावित क्षेत्र और परिणाम विषय पर पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के मद्देनजर अब केवल बयानबाजी से आगे बढ़कर कार्रवाई और आपसी सहमति की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस महत्वपूर्ण अवसर ने वायु शक्ति के एक ऐसे दृष्टिकोण की शुरुआत की जिसने आने वाले दशकों के लिए देश की रक्षा प्रणाली को आकार दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 883 अंक गिरकर 71,756 पर और निफ्टी 308 अंक कम होकर 22,295 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सर मेरा फोन चोरी हो गया, आपका फोन दे दीजिए सर प्लीज, एक कॉल करना है सर प्लीज सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: एक कॉल करूँ सर पापा को बस सर प्लीज सर, फोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक जन के फोन से फोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है ये लीजिए सर आपका फोन, थैंक यू फोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। फिर इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: इतने पैसे, माय,
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जा रहे हैं ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर।
6: डॉक्टर?
3: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
6: वो किसी को भी हो सकता है।
5: और अगर हो गया तो बिना फूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो
5: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या। किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियां भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। Stay tuned.

सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने क्या?

फ्रीकुएंसी 91.2 तो जुड़े हुए हो तुसी रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते अज दे कार्यक्रम च तुहाडे नाल है तुहाडी अपनी दोस्त सुमन ते आओ सुनदे आ पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो गुंजन तो तुसी इस वेले सुन रहे हो पंजाबी गीत ते आज मैं है तुहाडे नाल तुहाडी अपनी दोस्त ते आओ सुनदे हां एक होर पंजाबी गीत।

0: सोने सोने गीता नू लेकर हाजिर हो गई है तुहाडी अपनी दोस्त सुमन ते आओ फिर तो सुनते हाँ एक होर पंजाबी गीत।
1: Never miss an update. Subscribe now and

इस वेले तुसी सुन रहे हो पंजाबी गीत रेडियो गुंजन धर्मशाला ते पेश करदे आ इक होर पंजाबी गीत। तुसी इदां ही बने रहे हो साडे नाल यानी रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल।

श्रोतो इस वेले तुसी इंजॉय मान रहे हो पंजाबी गीतां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला तो जिथे असी तुहानू सुनवा रहे हां वख-वख गायकां दी बोली विच गाए वख-वख पंजाबी गीत।

अज दे सफर नूं तुसीं तय कीता अपने दोस्त सुमन दे नाल ते हुण समा हो गया है तुहाडे तों विदा लेण दा। अगली बार फिर तो नवे पंजाबी गीतां राहीं तुहानूं मिलांगे। उदों तक तुसीं रखियो अपना ख्याल।

0: सर मेरा फोन चोरी हो गया, आपका फोन दे दीजिए सर प्लीज, एक कॉल करना है सर प्लीज सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: एक कॉल करूंगा सर पापा को बस सर प्लीज सर, फोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक दिन के फोन से फोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है ये लीजिए सर आपका फोन, थैंक यू फोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। फिर इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: इतने पैसे, माय,
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जाएगा ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहा है बुड़बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर।
6: डॉक्टर?
3: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
6: वो किसी को भी हो सकता है।
5: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो
5: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: तो याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या, किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियां भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। स्टे ट्यून्ड।

0: सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला।
1: बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने हैं क्या?

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहां सारें दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होई हो कार्यक्रम लेके माटी दी महक। तां श्रोताओं कर दे ने कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीते कने। तोहां सारे ही नहीं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गूंज अपने बंदी

हाँ बोला थे न रेडियो गुंजन धर्मशाला थे कने तो हाँ सारे ट्यून किते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है माटी दी महक श्रोताओं सुन दे एक और प्यारा दिया गीत।

सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला इन्हे तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम च अगे कने सुनते हैं एक और प्यारा दिया गीत।

इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देने माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि करने ता श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम चल गए कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

तुहां सारें दा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तुहां सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक आशो तो बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुनदे निक और प्यारा दिया गीत।

हाँ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तुहां सारिया ट्यून कित्या है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चलिया है माटी दी महक। श्रोताओं सुनते ने एक और प्यारा दिया गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो हाँ सारे ट्यून कितने है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने। तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी भी महक ता श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन दे निक और प्यारा दिया गीत।

इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि कन्ने ता श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अग्गे कन्ने सुनते ने एक और प्यारा दिया गीत।

92.2 MHz पर ए है तो हाँ सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महक कहा श्रोता अज कने कार्यक्रम च बस इतना ही तो हाँ सारे ने बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने।

0: सर मेरा फोन चोरी हो गया, आपका फोन दे दीजिए सर प्लीज, एक कॉल करना है सर प्लीज सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: एक कॉल करूंगा सर पापा को बस सर प्लीज सर, फोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक दिन के फोन से फोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है, ये लीजिए सर आपका फोन, थैंक यू फोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: इतने पैसे,
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे, और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहा है बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर।
6: डॉक्टर?
3: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
6: वो किसी को भी हो सकता है।
5: और अगर हो गया तो बिना फूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो
5: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: तो याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या, किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी। तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियां भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। Stay tuned.

0: सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला।
1: बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने क्या?

291.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: सर मेरा फ़ोन चोरी हो गया, आपका फ़ोन दे दीजिए सर प्लीज़, एक कॉल करना है सर प्लीज़ सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: एक कॉल करूँगा सर पापा को बस सर प्लीज़ सर, फ़ोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फ़ोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक दिन के फ़ोन से फ़ोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है ये लीजिए सर आपका फ़ोन, थैंक यू फ़ोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। फिर इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: कितने पैसे? माय,
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फ़ोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज़ करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे, और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहा है बुड़बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर।
6: डॉक्टर?
3: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
6: वो किसी को भी हो सकता है।
5: हाँ, और अगर हो गया तो बिना फूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो
5: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: तो याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या। किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियाँ भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। Stay tuned.

0: सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला।
1: तुम
0: बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने हैं क्या?

0: हाँ जी नमस्कार जी। FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो आ रहा हूँ आरजे सचिन कपूर हाजिर बुझुआ तुंद सभी रे रेडियो सेट में रेडी गुंजन धर्मशाला मंच बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक अभिनंदन। हाँ सभी होने आ रहा सभी श्रोतागण रहा कैसे हैं तो है सब उम्मीद कर दें तो है सब खरे भूणे हस्ट पुष्ट और तंदुरुस्त भूणे हिन और अपने घरें मस्त भूणे हिन। शो तो अक्सर मस्त रहना की यहाँ सो बहुत ज़रूरी है बेहद ज़रूरी है शो तो लाइफ हेरा बलते ना जिंदगी की सो हंसते खेलते निकलेगा छना तो जिंदगी री गल की सो बड़ी कमाल लगती है बा कमाल लगती है शो तो सभी पहले धर्मशाला रे मौसम की सोतुस हो गया है शेयर कर लेंदेन साझा कर लेंदे हिन शतों इस समय अगर है दसिए तो धर्मशाला रे मौसम 16 डिग्री सेल्सियस रे आसपास है शतों और न मेरी गल करूँ तो नमी की सो इस समय 82% रे आसपास है जतियो अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी भी बनते हिन शतों। इनडोर ह्यूमिडिटी की गल करूँ तो 62% रे आसपास इनडोर ह्यूमिडिटी भी इस समय किया सो धर्मशाला में बन रही है विजिबिलिटी 8 किलोमीटर तक हा तो इस समय धर्मशाला रहा ताज़ा हाल मौसम रहा। हालांकि तुसो दसी था पिछले कल यानी कि 9-7 तारीख का जो कि अशोतों सो काफ़ी तेज़ तरार बरखा की अशोभ हुई थी छिया जो भी है ना काफ़ी तेज़ तरार बरखा की अशोभ हुई थी शोतों धर्मशाला मंच तो ये है जी धर्मशाला रेड़ी हरी हवाएं इड़ी हरी फिजाएं इड़ी रहने कोई थोर और मेरा धर्मशाला इतना सुंदर इतना खूबसूरत है जितना सुंदर और खूबसूरत नहीं है कोई और जी बिल्कुल इस प्रकार रहिंदा ये धर्मशाला अशोतों और पोषण माह रहा भी आज अंतिम दिन हा शोतों यानी कि जो उद्देश्य बुंदा हा पोषण राष्ट्रीय पोषण माह रहा तो सोए बुंदा शोतों कि बच्चे गर्भवती महिला स्तनपान करने वाली माताएं और किशोरी मंच किया सो किस प्रकार होगी त्यारा खान पान रह किया सो ध्यान रखना अपनी सेहत रखिया सो ख्याल रखना ये बहुत ज़रूरी बुंदा हा शोतों है ना जी। और इसी सो गेंद श्रोतागण बिल्कुल असोगी कनेक्ट पूछ गए पुछ दिन कौन बल्लून दिन और कड़ी थो बल्लू कर दिन कनेक्ट कर दिन। नमस्ते जी।
1: नमस्ते अंकल।
0: नमस्ते जी। नमस्ते जी कौन बल्लून दिन और कड़ी थो बल्लून दिन।
1: फतेहपुर थो बल्लू दे।
0: अच्छा जी फतेहपुर थो बल्लून दिन क्या ना जी तुंदा।
1: मिठू।
0: मिठू मिठू जी कस क्लास में पढ़ दें तो है।
1: नौमी।
0: अच्छा कस स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा मिठू जी तो क्या फरमाइश लेकर आए आज तो है रेडियो गुंजर मंच। जिंदगी सोनी वाकई में मिठू जी जिंदगी सोनी है। कुछ सोच रहा मिठू जी की फर्दर क्या प्लान है इन तुम फ्यूचर।
1: नहीं
0: सोच रहा। क्या बात है चलिए थोड़ा घर टाइम आ सोचे लिया दसवीं तक की सोचे लेना चाहिए था क्योंकि ग्यारहवीं है तो फिर दस प्रकार दस जो फील्ड तो है चुनी सकते हैं दस फील्ड रही और के सुगाने रसम चली है ना।
1: हाँ जी
0: ठीक है मिठू जी जरूर तुम दी फरमाइश पूरी कर ले। नमस्ते।
1: ठीक है जी
0: तो श्रोतो हिंद अगले श्रोता भी असोगी कनेक्टेड हिंद। नमस्कार जी।
2: हेलो।
0: हेलो नमस्कार जी।
2: नमस्कार सचिन जी। नमस्कार।
0: नमस्ते जी। नमस्ते ठीक ठाक ने
2: जी। मेहरबानी है जनाब आपकी मेहरबानी है।
0: ना ना जनाब इंदी कटेरी मेहरबानी तुंदी मेहरबानी है तुंदा प्यार तुंदा आशीर्वाद इस नाची सोगी बंडरा ए कौन बल्लू कर देन और कड़ी थों बल्लून देन।
2: अरे हम टिल्लू थों बल्लू ने करतार सर।
0: अच्छा टिल्लू थों करतार जी। करतार जी टिल्लू री ता हवाएं बड़ी प्यारी है ना।
2: ओ सर क्या इंडिया हुआ था जितने गवर्नमेंट है सर।
0: हाँ बिल्कुल
2: जी यार तारीफ करते ही है
0: जी।
2: और तू तो भी सुना दो क्या इंडिया सिंधु आ जड़ी है बहन दे इंडिया बाल बच्चे समेत।
0: हाँ जी बिल्कुल
2: तारी आईपीएस वाले में आज खुदाई लाइक क्या मशीन में चलाने वाले बड़े टाइम में तो करूँ दे के ना बनना चाहिए।
0: अच्छा
2: तारी मशीन ना लाइक है तारी मेरी बाहर आ दी तारी बड़ी बड़ी इसलिए ऊंचा चिल्लू सुनता है सारा पुटी।
0: ओहो
2: पूरा ग्राम परेशान है आपका।
0: आईपीएस डिपार्टमेंट आला कितड़ी क्या लूरे बनाना गेस्ट हाउस लूरे बनाना
2: गेस्ट हाउस ना पानी के टैंक लूरे सर बनाना
0: अच्छा पानी के टैंक लूरे बनाना
2: हां थल्ले स्कूल आता
0: है अच्छा
2: स्कूल है खतरा है तो अच्छा ग्राम थल्ले कुछ खतरा
0: चलिए जी क्या बली सकते ने और क्या क्या करी सकते नीतियां था अब कुछ स्ट्रक्चर तीन सोच रहा तुंदा सोचना कुछ अलग है त्यारा सोचना कुछ अलग है ना जी
2: ता ਇਹ ਜਾਇ ਤਾਂ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੇ ਮੁੜ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਸੀ ਬਸ ਸਬਰ ਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਤੀਆਂ ਨਾ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀ ਕਰੇ ਮਾਨ ਰਾਜੀ ਨੇ
0: ਚਲੀਏ ਫਿਰ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਤੋ ਠੀਕ ਬੱਲੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਬੁਚੇ ਗੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾ ਚਲੀਏ ਔਰ ਦਸ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਨਾ ਜੀ
2: ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਰ ਵਧੀਆ ਅਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਦੇ
0: ਨਾ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਸਰਦੀ ਅੱਛਾ
2: बड़े बड़े लोग बच्चे लेके समझा था मैं ना पंखे जरूर कहना पूछना है आवे तारी बैठना सब तो कौन निकना रे बाउंड्री लगा नहीं क्या कर सकता
0: है चलिए दुख तब बंदा की अपनी चीज जहने फुटी गच्छा अपनी चीज जहने गुआची गच्छा है ना अपनी चीज बिगड़ी गच्छा तो दुख तब बंदा है तुंदा अपना ग्रां और तुह अपने ग्रां री जगह वास्ते इतनी पेन ले कर देन ये वाकई में इंसानियत रहा बहुत अच्छा एक मैसेज गे तो है सब भी हो एक ही असो असू सब भी हो दिता हा कि अपने ग्रां रे इतनी पीड़ की सो करना बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है ना नहीं तो आजकनी डेट में किया इस कलयुगी दौर में किया कि सुमनो मतलब कोई फर्क ही नहीं है ना कसी क्या बच्चू करता कसी क्या बच्चू करता कसकी वे ग्रां किया इंद ग्रां की है सेरे घर के कोई फर्क नहीं लेकिन तुह इतनी पेन लेकर इतने भरे दिल होगी कि तुह बल्लो आऊँ तुंदा बड़ा तहे दिल था तुंदा आऊँ मतलब रिस्पेक्ट करनो तुंदे इस गल्ला री कदर करनो
2: धन्यवाद बहुत है धन्यवाद
0: धन्यवाद जी क्या फरमाइश लेकर आया नजर रेडियो गुंजर मंच
2: हां जी बाहर निकले निकुओ चुओ बाहर मनु
0: अच्छा ठीक है जी जरूर होने ले
2: ठीक है सचिन जी धन्यवाद
0: धन्यवाद जी धन्यवाद
2: ठीक है सर ओके
0: श्रोतों एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजर धर्मशाला हा हुणो कर दे तो है और आऊं तुंद अपना नाचीज आरजे सचिन कपूर हा तैयार लेकर चलते हैं तुसु सभी जो फरमाइश आ रही और बने रहा जुड़ी रहा इस नाचीज सोगे आरजे सचिन कपूर सोगे तो फरमाइश रा दौर के शो तो सब ऐसो जरूर पूरा करना हा और जरूर करना हा इन दे श्रोतागण असू के कनेक्ट बच्चू करते हैं 7081 8119 पर तो है भी कॉल कर सकते हैं नंबर अक मौके फिर हूँ शेयर करना 7081 8119 पर तो है कॉल कर सकते हैं

0: श्रोतों एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सब भेटी उनको रोर कार्यक्रम है हिंदी अपनी गप्पा कहना है सो तो है सब हूँ कर देना आर जय सचिन कपूर सो गया और अश्रोतों जिंदगी जो अगर सोने तरीके होगी जीन तो जिंदगी वाकई में ही सोने और अगर जिंदगी जो सोने तरीके होगी ना जी एक अच्छा श्रोतों फिर वाकई में ज़िंदगी सोने की है सो बिल्कुल भी ना लग दिली जनाब तो बहरहाल कार्यक्रम जो हगो बनंदे हिन और या फरमाइश जो किया सो ज़रूर पूरे कर दे हिन लेकिन तथों पहले इन दशोता सो के कनेक्टेड हिन नमस्ते जी
1: नमस्ते महाराज
0: जी महाराज नमस्ते नमस्ते क्या हाल
1: सब कुछ मैं तो नहीं और मेरा नहीं
0: अच्छा और करे लुगरन कैलूर करना
1: बस ये कह रहा देख रहे महाराज अब रेडियो लगाओ मिलेगा गलबात करने लगा
0: अच्छा
1: हाँ जी
0: बाकी सब ठीक ठाक है जी
1: हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक महाराज जी
0: अच्छा
1: हाँ जी और आप सुनाओ जी
0: बस जी है भी ठीक ठाक ने राजी बाजिन
1: चलो मालिक सदा चलिए राजी रखे जी
0: चलिए जी कुंडने गीत होना पसंद कर ले जी तो है श्रोतों एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रो रहे कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा कहना सो चल रही हैं श्रोतों ता कार्यक्रम मंच थोड़ा करे और हगों की है सो जरूर है बड़े गंदे हिन और फरमाइशरा दौर धीरे धीरे किया सो पूरा ही करना किया सो लगी पेंदे इन श्रोतों

0: तो श्रोताओं जिन की तुसु पता कि आऊँ रोज़ाना की इस वक्त स्टोरी लेके रही तुंदे मध्य नज़र इच्छु करता हा श्रोताओं और कोशिश करूँ करता हा कि एक प्यारी थी स्टोरी रोज़ाना की असो अपने श्रोता जो जरूर होना है ना। तो इस सब श्रोता असो की बिल्कुल जुड़ी सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 7081817091 पर। अब फरमाइश रहा दौर बिल्कुल चल रहा है, अगले श्रोता के सो असो की कनेक्ट के ना सो बिल्कुल बुझ गए हैं। नमस्ते जी।
1: नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते।
1: नमस्ते। ठीक ठाक
0: हो? बढ़िया जी बढ़िया। तो ये दसा तो ठीक ठाक?
1: हमें तो ठीक ठाक, जेड़ा दिन निकल गया वो ना ठीक निकल गया।
0: चलिए जी, जिंदगी तो हमेशा ना निराश ना रहना चिंदा कजो के है ना। 84 लाख जीवन थो बाद असुए जीवन किया समूल रहा, तो हमेशा ही अपने आप तो नाराज रहना या हमेशा ही अपने आप जो दुखी समझना या दुखी रहना ये कोई निवारण ना बुंदा है। चलो बड़े बड़े दुख बुंदा इंसान रे जीवन में ना, सब भी हो बुंदा ना अपने अपने लेवल अपने अपने स्तर रहे, लेकिन अपनी तरफ थो कोशिश करनी ना कि अह खुश रहन दिन कुछ वजह तो पी लिया खुश रहने रे है ना। चलो यही वजह सोच लिया, यही वजह सोच लिया कि कार्यक्रम आए हुनु कर दें और
1: बड़ा अच्छा दुख लग गया जरा कोई शांत हो जाएगा।
0: हाँ बिल्कुल, यही सोच लिया यही कार्यक्रम जो मतलब बस ये सोचा ना कि ये भी एक वजह मतलब रेडियो भी एक वजह बना लिया कि मो इति होगी कि सो हंसना है ना, मो ये गल्ला होने करे हंस लेना या ये गल्ला तो मुझे आऊं मोटिवेट वो चुकर दे
1: कुछ गल्ला सुन के शांति भी आ जाएगी, समझ भी आ जाएगी, बड़े अच्छा प्रोग्राम।
0: चलिए जी, धन्यवाद जी, है तो तुंदा आशीर्वाद तुंदा प्यार कुंडना गीत होना तो सुन अच्छा तो है वाकई में तुंदी आवाज तो थोड़े करी दुखी की सो मुझे लगू करता है क्या मतलब क्या लगता तू सु जिंदगी में क्या ना मोड़ो तू सु कति वास्ते तो है
1: जिंदगी ऐसी तो सब कुछ है भगवान ने दिया सब कुछ दिया चलो जो कमाई के अपना देखनी है अपना शरीर नहीं ठीक था।
0: अच्छा
1: अपना शरीर नहीं ठीक है, दवाई ले खा रहे हैं ठीक है, लगे ना दो फल फल ठीक है लगने
0: अच्छा
1: दवाई तो है अपने अपने तबीयत नहीं ठीक पर ये चल दिए भगवान चलो ये

0: देवी दुख दौरे संसार सुन दौरे तुम्हारे सब दस ओ
1: ओहो, तो कुंदिन गीत होना चाहते हैं तो है शिव जी,
0: ना
1: शिव जी
0: ना
1: भगवान
0: जी
1: जन वाला है ना जी।
0: जी
1: चलो
0: जी
1: ठीक है जी, जरूर होने ले, धन्यवाद जी। FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी है ट्यून कर रहा, और कार्यक्रम मंच आई अगली फरमाइश कर दिन पूरे बने रहा। आरजे सचिन कपूर सोगे गूंज अपने पन रे।

0: श्रोताओं, एफ एम बैंड 91.2 MHz पर हे वेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम होनो कर देने हिंदी अपनी गप्पा फरमाइश रहा दौर बिल्कुल सही आ चालू आ और इंदे श्रोतागण भी ऐसे होगी जुड़ रहे हैं। अगले श्रोता और कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी। हेलो हेलो, नमस्कार जी। हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते, मैं यूं से बोल रहा था परेशान।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: समझो एक भजन है शेर सिंह का, हरि राम का चोरा रंग लावा दे मैं गंगा डुबकी लगा ले।
0: शेर सिंह का भजन है।
1: हाँ जी हाँ जी, शेर सिंह का हरि राम का चोरा रंग लिया तो गंगा डुबकी लगा ले। आज मैं
0: हरि राम दा
1: चोला रंग लिया,
0: चोला
1: गंगा डुबकी लगा लिया, अब मेरे राम आए।
0: चलिए ठीक है जी, रंग दे चोला।
1: और हाँ जी, और सब ठीक है ना?
0: बढ़िया जी, ठीक है जी, जरूर
1: ठीक है।
0: नमस्ते। अगले श्रोता जो करते हैं कनेक्ट। हेलो श्रोतो, एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गैन सो तो है सब हूँ कर देने अपने अपने रेडियो सेट में रेडियो गुंजन धर्मशाला मंच। आइए कार्यक्रम जो हगो बढ़ दें श्रोतों और जो स्टोरी आ सो वो जरूर लेके रहनी है, लेकिन नक दसू करते थे इन श्रोता जो थोड़ा करे अपने शरीर तो तियों लगता कि सो दुखी हैं। चलिए वह इतना तो है कुछ न बोली सकते है ना, कहने कह बुझ गए इंसान जो है कोई भी न जानता, लेकिन शंकर महाराज जी रहा

चलिए श्रोताओं, तो अब इंतज़ार ख़त्म कर दें और कहानी जो कर दें शुरू। तो श्रोताओं जी की तो सब जान दें कि है तो सुवास्त किया सो रोज़ाना कोई ना कोई स्टोरी की सो लेकर इच्छुक कर दें, प्रयास अपनी औरतों की सो करू कर दें। कजो कोई रेडी गुंजन जो तो है अक्सर हूँ दहन, लेकिन अब है फेसबुक रे माध्यम तो भी कोशिश करू कर दें कि इन दे जो श्रोतन सो असू हेरी भी सकन किया है किं करी बहन देन किं करी गिणन देन और क्या इन सेटअप किया सो रिंदा हा। तो फेसबुक रे माध्यम तो भी है कुछ एक रील्स के सो पाऊ कर दें श्रोतों। तो एक कहानी है श्रोतों, एक बिजनेसमैन रे जो बड़ा घाटा खाऊ करता तो श्रोतों अपने बिजनेस में। जी बिल्कुल, ए बिजनेसमैन क्या सो काफ़ी ज़्यादा परेशान थो और ए परेशानी मंज इंसान क्या ना करता श्रोतों, सब कुछ करता हा, काफ़ी ज़्यादा परेशान थो और इसी इतनी ज़्यादा परेशानी पूछ गई थी श्रोताओं कि इसी कुछ समझ नहीं इच्छु करता तो क्या हूँ लाइफ में करूँ तक करूँ क्या, इतना ज़्यादा घाटा इच्छु करता किए ज़िंदगी किया सो चल ले किए करें हूँ सर्वाइव किया सो हगूँ कर ला। तो एगो अक्की संत वाले श्रोतों, अक महात्मा वाले, तो महात्मा जो अपनी स्टोरी की सो हुनाना लगो कि मुझे बिजनेस में ही करे घाटा बुच्छु करता है करे ये बुच्छू करता हा आऊँ तो कड़ी अरा बिना रे रे हुआ आऊँ कें करे अपने आप जो स्टेबल करूँ कें करे अपने आप जो मतलब खड़ेरूँ फेरे ये रोंदा गच्छु करता तो और महात्मा किया सो सेरी गल्ला किया सो हुनता गच्छु करता तो और लास्ट अंदर जहने नहीं अपना सब दुखड़ा होना ही था बाद महात्मा के सो इसीलिए आके चिट्ठी देते बल्लो यह चिट्ठी किया इस कागजा किया सो घरे की चिगरी खोल लें और घरे की चिगरी हेरे इन्हें भी तीन करो डोल चुपचाप है अपनी गड्डी स्टार्ट करी और घर कमरे की चिगरी किया सो चिट्ठी पढ़े तो हाँ चिट्ठी मंज लिखू रो कि रोज़ तुझो होगी बुंदा हा तनिया महात्मा किया तिनिए संत किया सो लिख रो थो भगवान रे प्रति सेरी आस्था किया सो बिल्कुल घट थे बिल्कुल जीरो बुझे कुछ रहे थे तो तिनिया ये लिख रो थो कि रोज किया सो तुझो की बुंदा हा लेकिन तू मेरी किनारी किया सो ध्यान ना दिंदा हा तू मेरी किनारी किया सो हेरदा नहीं तेरे किया सो मुंजो माँ आस्था घट हा तो रोज़ वह गौठदा उठ कर ही नहीं ना चले गंदा आऊँ सोचता तहने तू मेरा ना ले ला लेकिन तहने भी तू मेरा ना न लेंदा हा आऊँ सोचता नहीं करे आता वे ले ला तहने भी न लेंदा आऊँ सोचता ऑफिस ही अपने कम में जो चलो आता बस में या बाइक में सफ़र करू करता हा या स्कूटी में सफ़र करू करता या अपनी गड्डी में सफ़र करू करता तो सफ़र रे दौरान किया सो मेरा ना तहने मेरा ना ले ला तो तहने भी किया सो तू मेरा ना न लेंदा हा सोचता जहने ऑफिस में लंच टाइम हुंदा लंच तो पहले तू मेरा ना ले ला ता भी तू मेरा ना न लेंदा हा सोचता संध्या काल में किया ता तू ना ले ला मेरा तू ता भी मेरा ना किया सो न लेंदा हा आऊँ तेरे सोगे आ लेकिन तू मेरा ना ही न लेंदा मुझे पुकारदा नहीं मुझे याद ही न करदा सोचता जहने तू संजा अपने परिवार होगी बेखुरा बुंदा हा तथों बाद तू मेरा ना ले ला तू ता भी न लेंदा हा सोने थो पहले सोचता कि ता भगवान रा ना ले ला है एह ता भी भगवान रा ना किया सुना लेंदा इन शो तो और फिर जहने कोई भयंकर मुसीबत असूले चलेंदे कोई भयंकर तूफान इंदी जिंदगी में चलींदा ता है किया सो भगवान रा ना लेना लगदा इन ता है ले ता है किया सो ब्राह्मण ले दौड़ना लगदा इन ता है किया सो चेले लगाना लगदा इन है ना लेकिन भगवान रा ना उस ईश्वर रा ना लेना किया सो बहुत ज़रूरी है जिन्हों भी तो है मंदेन जस भी भगवान जो तो है मंदेन अपना भगवान मंदेन त्यारा ना किया सो संजा भगा या जहने भी तुसु समय लगदा तहने लेना किया सो बहुत ज़रूरी है सिर्फ और सिर्फ तहने लेना ज़रूरी नहीं कि जहने तुंदी जिंदगी में तूफान चलिया या तुंदी जिंदगी में कोई ऐसा सैलाब चलिया ता तो है भगवान रा ना लेना लगी पैन अक्सर भगवान जो याद कर दे रहे हो करा श्रोतो मन जो बड़ी शांति मिलते हा और जिंदगी बड़ी प्यारी लगती है बड़ी सरल लगती है बड़ी अच्छी लगती है कुछ इस प्रकार री और स्टोरी लेकर आऊँ सचिन कपूर जरूर हाजिर भूला तीन तक दिया इजाज़त।
नमस्ते। फिलहाल इजाजत अह मंगे है, फिलहाल है इजाजत मंगे है श्रोतों इस गीत का जो हुनाने ताए। और क्योंकि मेरे सो है फेसबुक के माध्यम तो भी किया सो लाइव हूँ दिन और तड़ी भी किया सो अपने श्रोता जो कोशिश करते हैं कि जानकारी की सो श्रोता तक है पहुँचाई सकना और कुछ एक स्टोरी की सो श्रोता तक पहुँचाई सकना। तो यह फिलहाल योल थो जो फरमाइश थी तैयारी फरमाइश में गीत

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रो और कार्यक्रम है हिंदी अपनी गप्पा गेन सो बिल्कुल बखूबी चल रही तुंदे सभी रे रेडियो सेट में रेडियो गुंजन धर्मशाला मंच आइए श्रोतों कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं और कार्यक्रम मंच हमें लेकरी चल दे तो सभी श्रोता जो अगली कुछ जानकारी दी और जानकारी रा सिलसिला गया सोए चले रहना श्रोतों जानकारी रा पिटारा ही खुलते रहना श्रोतों। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है कि ऐसो सरकार गांव रे द्वार कार्यक्रम रे दौरान बच्चों और स्थानीय मनू थों कि ऐसो जो वायदे कर रहे हैं तिन्या वायदा जो पूरा करते हुए शिमला जिला रे रोडू विधानसभा क्षेत्र रे भटवाड़ी और रामपुर विधानसभा क्षेत्र रे काशापाट रे वास्ते के सो विकास कार्य भी सौगात दिते हैं श्रोतों। रामपुर स्कूल में विद्यार्थी वे सोगे संवाद रे दौरान अक छात्रा है कि सो मुख्यमंत्री थो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रचोली वे नए भवन रे निर्माण रे वास्ते 2 करोड़ रुपये री मांग करी थी श्रोतों। मुख्यमंत्री है कि ऐसो बच्चे भी इस मांग जो प्राथमिकता दिंदे हुए घोषणा करे हा कि जहने भी अभी योजना विभाग है कि ऐसो स्वीकृति प्रदान करे देते हा ना माफ करा जहने भी ना जी मुख्यमंत्री है बच्चे भी इस मांग जो कि ऐसो प्राथमिकता देते हा और घोषणा करे हा कि योजना विभाग भी स्वीकृति प्रदान किया सो करी देते हा श्रोतों। इसी प्रकार काशापट वे स्कूल वे नए भवन रे निर्माण रे वास्ते भी 2 करोड़ रुपये जारी किए सो करी दिता है। इस तरह मुख्यमंत्री है कि सो बच्चों की जो वादे करूरे थी है सो निभाए हैं। शिक्षा रे वास्ते बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई भी उपलब्ध करवाने भी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम किए सो चुको छो तो। मुख्यमंत्री अपने प्रवास रे दौरान जनता री मांग जो गंभीरता थो होना और अब तैयारी घोषणा वे अनुरूप धनराशि जारी कर ये सुनिश्चित करो कि विकास कार्य जो शीघ्र गति मुड़ी सका छो तो। आइए कार्यक्रम जो आगे बढ़ते हैं और फरमाइशा जो भी किए सो पूरा कर लेते हैं बनी रहे तो सब आरजे सचिन कपूर सो गए।

श्रोतों एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रो और अब वक्त बुझेगो तुझ सभी थो अलविदा लेने रहा तुझ सभी टाटा बाय बाय बालने रहा और हम तो ये बोलना चाहूँ श्रोतों की सियाने भी सेवा किया सो जरूर करा माता पिता रे सेवा किया सो जरूर करा और ज़िंदगी में छू रहे तो खुश ज़रूर रहे शोधों दुखे मत रहे है ना। हाँ मुझे पता कि लाइफ में बहुत सारे कोइंसिडेंस ऐसे बुचगन दे जो है वो दुखी कर दें लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस ऐसे चली दिन कि जो है वो दुखी कर दें लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें ऐसी चली दिन जो है वो दुखी कर दें लाइफ में बहुत सारी तकलीफ ऐसी चली दिन दुख दर्द ऐसे चली दिन कि जो है वो तकलीफ दिन दे हिन जो है वो दुखी कर दे हिन। लेकिन ये तो चैलेंजेस के ना सो इच्छू ही कर दें ना लाइफ में तुस वो कोई बल्लू करता क्या है तुस वो खुश कर दें तुस वो कोई बल्लू करता क्या है तुस वो हसन दें तुस वो कोई बल्लू करता क्या है तुस वो चला आज रे ले चल दे आज और ले चल दे ना बल्लू कर देना ये सब तुसू आपू करना हा खजोगे इसलिए तुसू कोई ना बल्लू करता बाकी जो दुख दर्द है सो मनु भी देना तुसू अपने भी देना तुसू और तुसू इना भी है दुख दर्द सो अपने आप जो हैप्पी जरूर रखा स्ट्रेस बिल्कुल मत लिया कजो कि स्ट्रेस वाला आदमी की ना शोधो सो खड़िया रहना रंदला बरहाल हूँ सचिन कपूर ले लेनू तुसू थो अब इजाजत नमस्ते धर्मशाला।

0: अपना फोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया,
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
1: डॉक्टर। अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: हाँ, और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: तो याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या। किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है, जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियां भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। Stay tuned.

0: सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला।
1: बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने क्या?

और कार्यक्रम लेकर मैं सचिन कपूर हाजिर हुआ हूँ, गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए जी आगाज करते हैं कार्यक्रम का इस प्यारे से गीत के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आपका अपना वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और आप सभी हमारे साथ इस सुर की ट्रेन में जो है वो बैठे हुए हैं, और ये सुरों की ट्रेन यूं ही चलती रहेगी। आप सभी हम सफर की तरह इसमें यूं ही आनंद लेते रहिए गीतों का।

इस समय आप सभी ने ट्यून किया है वेणी गुंजन धर्मशाला और मैं नाचीज सचिन कपूर हूँ। कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने को होस्ट कर रहा हूँ और ये प्यारे प्यारे से नगमे आपके बीच आपकी उस ट्रेन में रख रहा हूँ। आइए इसी के साथ लेके चलते हैं एक और प्यारे से गीत की ओर।

आप सभी बने हुए हैं इस समय 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ यूं ही बने रहिएगा और हम इसी तरह से आपके दिल को खुश करने की गीतों की ये डोर यूं ही चलती चलेगी श्रोताओं, जब तक आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं। गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का आनंद आप सभी ले रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर।

रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम 91.2 एफएम पर सुन रहे हैं। बिल्कुल नाम है कार्यक्रम का गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए इसी तरह से आनंद लेते चलते हैं नए पुराने गीतों का और सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा एक और गीत। ये नगमे यूं ही चलते रहेंगे, ये ट्रेन यूं ही चलती रहेगी, आप सभी हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा रेडियो गुंजन की गूंज के साथ।

अब सभी बने हुए हैं इस समय आपके अपने रेडियो गुंजन के साथ, कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं अपने अपने रेडियो सेट पर। ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा, ये कार्यक्रम यूं ही महकता रहेगा आपके घर पर, आपकी गाड़ियों में, आपके खेतों में और जहां जहां भी आप सभी ने इस समय 91.2 FM ट्यून किया है, वहां वहां ये कार्यक्रम की गूंज यूं ही गूंजती रहेगी।

मैं सचिन कपूर हूं और कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने को इस समय आप सभी के वीडियो सेट पर होस्ट कर रहा हूं। ये सिलसिला ये गीतों का पिटारा ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सुनाते हैं इसी बीच एक और प्यारा सा गीत।

गीतों की माला यूं ही पिरोते रहिए, गीतों की माला यूं ही संजोते रहिए। हम आपके साथ हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला में, और धर्मशाला से बिल्कुल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला में। यूं ही बने रहिएगा आपके अपने रेडियो गुंजन के साथ, और कार्यक्रम में गीतों का आनंद यूं ही लेते रहिएगा। कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने।

0: सर मेरा फ़ोन चोरी हो गया, आपका फ़ोन दे दीजिए सर प्लीज़, एक कॉल करना है सर प्लीज़ सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: एक कॉल करूँगा सर पापा को बस सर प्लीज़ सर, फ़ोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फ़ोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक दिन के फ़ोन से फ़ोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है, ये लीजिए सर आपका फ़ोन, थैंक यू फ़ोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। फिर इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: कितने पैसे?
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फ़ोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज़ करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे, और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहा है बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर।
6: डॉक्टर?
3: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
6: वो किसी को भी हो सकता है।
5: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो
5: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: तो याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती हैं। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या। किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियां भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। स्टे ट्यून्ड।

0: सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला।
1: बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने क्या?

नमस्कार श्रोतो, FM बैंड 11.2 MHz पर यह है वेडी गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ सचिन कपूर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद भी है कि आप सभी अच्छे होंगे, होप है कि आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में हम आपका स्वागत कर रहे हैं और इसी स्वागत के साथ कार्यक्रम का आगाज़ करेंगे। श्रोतों, धर्मशाला के कुछ एक खबरों के साथ, कुछ एक जानकारियों के साथ और आज के मौसम के साथ। तो इस समय श्रोताओं बात की जाए तो धर्मशाला में 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो मौसम बना हुआ है। श्रोताओं, नमी की बात की जाए, जिसको अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी कहा जाता है, तो नमी जो है श्रोताओं वो लगभग 86% के आसपास जो है वो बनी हुई है, 66% के आसपास जो है वो बनी हुई है श्रोताओं। तो यह है धर्मशाला का इस वक्त का मौसम जो हमने आप तक साझा किया। अब सभी बने हुए हैं 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। इसी के साथ श्रोताओं हम बिल्कुल कार्यक्रम का आगाज़ करेंगे कुछ एक गीतों के साथ। तो आइए आगाज़ करते हैं और उसके बाद फिर

श्रोतम एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला पर सभी ने जो है वो ट्यून किया हुआ है और मैं हूँ आपके साथ सचिन कपूर, आप सभी का अपना आरजे। श्रोतम, कहा जा रहा है कि मशहूर बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर का निधन जो है वो 8 अक्टूबर 2026 को हुआ है। श्रोतम, यानी कि बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। श्रोतों, यानी कि आज सुबह ही 5:20 के आसपास जो है वो उन्हें मृत घोषित कर दिया है। वो 75 वर्ष के थे और गोवा में रहते थे। श्रोतों, अपने आवास पर रहते थे। श्रोतों, दिल का दौरा पड़ने के कारण उन्हें सुबह गंभीर हालत में

गोवा के मणिपाल अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें जो है वो सुबह 5:20 पर मृत घोषित कर दिया। श्रोतों, उनके फिल्म कैरियर के बारे में अगर हम बात करें श्रोतों, तो वाकई में ही लाजवाब एक्टर थे, और एक्टर ही नहीं श्रोतों, उनकी कुछ कही हुई जो बातें हैं कि खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, सामने दिखोगे नहीं तो लोग जो है वो भूल जाएंगे। नाना पाटेकर भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली और बहुत बढ़िया अभिनेताओं में से एक रहे हैं श्रोतों। उनका कैरियर 5 दशकों से अधिक लंबा रहा है श्रोतों। कैरियर की शुरुआत की बात करूं तो उन्होंने 1978 में जो है वो फिल्म गमन से बॉलीवुड में कदम रखा था श्रोतों। उन्हें परिंदा, क्रांतिवीर, तिरंगा, अंगारे, अनाड़ी और खामोशी, द म्यूज़िकल जैसी फिल्मों में उनके दमदार और लीक से हटकर अभिनय के लिए जो है वो जाने जाते थे श्रोतों। गंभीर भूमिकाओं के अलावा उन्होंने वेलकम फिल्म में उदय शेट्टी और आइकॉनिक कॉमेडी किरदार निभाकर हर पीढ़ी के दर्शकों का दिल जो है वो जीता है। इवन की जो वेलकम फिल्म का एक सीन है वो आप सभी ने देखा होगा, जब वो हंसते हैं उदय शेट्टी के रूप में, जब वो हंसते हैं तो जो मजनू भाई की जो है वो फ़ोन में बेइज्जती होती है, और जब वो हंसते हैं और हंसकर पीछे मुड़ते हैं चाय का कप लेकर, तो वो जो रील है वो आज दिन तक बहुत वायरल जो है वो होती है श्रोतों इंस्टाग्राम में। तो बड़े भारी मन से कहना पड़ रहा है कि हर चीज़ का अंत जो है वो निश्चित है श्रोतों। गंभीर भूमिकाओं के अलावा उन्होंने वेलकम फिल्म में, जैसे कि मैंने बताया, उदय शेट्टी का आइकॉनिक कॉमेडी किरदार निभाकर हर पीढ़ी हमें अपनी जगह जो है वो बनाई है श्रोतों। उन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड्स और पद्मश्री सम्मान से उन्हें नवाजा गया था श्रोतों। उनका अंतिम संस्कार के बारे में कहा जा रहा है कि शायद उनका अंतिम संस्कार जो है वो मुंबई में किया जाएगा श्रोतों। ये अभी तक हो भी चुका है जी बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री से उनको बहुत लगाव था, और उनके करीबी दोस्त, उनके प्रशंसक, वाकई में हर चीज़ का अंत जो है वो निश्चित है श्रोतों। तो ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और क्योंकि जाना तो है एक ना एक दिन सभी को, तो

सभी श्रोताओं को कार्यक्रम में थोड़ी सी और आगे। तो आइए श्रोताओं, कुछ एक जानकारियों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। पठानकोट मंडी वास्ते मार्ग आवाज़ मार्ग पर श्रोताओं, खुशी नगर हमें नूरपुर बाईपास से जो है वो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन डिपो तक सड़क की हालत लगातार ख़राब होती जा रही है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे और उखड़ी बजरी के कारण वाहन चालकों व राहगीरों को परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है श्रोताओं। वहीं हादसों का खतरा भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार NHAI द्वारा हाल ही में सड़क के गड्ढे भरने के लिए कई स्थानों पर जो है वो कुल्तार डाली गई थी श्रोताओं, लेकिन एक दिन बाद ही कई जगहों से बजरी उखड़ने लगी। लोगों में रोष है कि सड़क की मरम्मत में कुल्तार व अन्य सामग्री की पर्याप्त मात्रा नहीं डाली गई, जिससे मरम्मत कार्य की गुणवत्ता पर जो है वो कई सवाल उठ रहे हैं। बारिश के दौरान सड़क पर पानी जमा होने से स्थिति जो है श्रोताओं वो और ख़राब हो जाती है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से सड़क की उचित गुणवत्ता के साथ स्थायी मरम्मत करवाने और जल भराव की समस्या का समाधान करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि पठानकोट मंडी फोर लाइन का निर्माण कार्य लंबे समय से पूरा ना होने के कारण उन्हें आए दिन ऐसी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और वाकई में इन श्रोतों के इतने साल हो गए हैं अब पठानकोट मंडी वास्ते राजमार्ग पर, अभी भी वो खुशी जो है वो नहीं छलक रही है, वो नहीं दिख रही है श्रोतों। आइए तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी बने हुए समय आरजे सचिन कपूर के साथ लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए थोड़ा सा डिटेल में जो है वो जान लेते हैं हम अपने इस अभिनेता के बारे में श्रोतों, जिनका आज 8 अक्टूबर 2026 को जो है वो निधन हो गया है। श्रोतों, दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 वर्ष की आयु में जो है श्रोतों वो आज 8 अक्टूबर 2026 को गोवा में दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया है। श्रोतों, नाना पाटेकर का जन्म उनका पूरा फिल्मी सफ़र भारतीय सिनेमा में 50 साल से अधिक समय का रहा है। श्रोतों बताना चाहते हैं, परिंदा, वेलकम, बॉम्बे, नट सम्राट जैसी फिल्मों में उनके दमदार अभिनय को हमेशा याद किया जाएगा। श्रोतों, उन्होंने नाम फाउंडेशन की स्थापना की जिसके माध्यम से उन्होंने महाराष्ट्र के हज़ारों संघर्षरत किसान परिवारों की मदद की। श्रोतों, निधन से कुछ दिन पहले गोवा में सम्राट क्लब इंटरनेशनल में एक कार्यक्रम में उन्होंने जीवन को लेकर एक बात कही कि मृत्यु के बारे में एक भावुक और प्रेरणादायक बात क्या कही। श्रोतों, वो ये कही कि मैं आज यहाँ हूँ, कल का किसे पता, मैं आज यहाँ हूँ, कल का किसे पता, हमें जब तक हम यहाँ हैं पूरी तरह से जीना चाहिए और समाज को कुछ वापस देना चाहिए। जी बिल्कुल श्रोतों, नाना पाटेकर एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता भी थे, लेखक भी थे और फिल्म निर्माता भी थे। श्रोतों, जो मुख्य रूप से हिंदी और मराठी सिनेमा में अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को श्रोतों महाराष्ट्र में हुआ। श्रोतों, मुरुड जंजीरा जगह का नाम है महाराष्ट्र में, एक वहाँ पर नाना पाटेकर का जन्म हुआ था। श्रोतों, उन्होंने मुंबई के साथ उन्होंने मुंबई के समर्थ विद्यालय में शुरुआती पढ़ाई की और बाद में श्रोतों उन्होंने ग्रेजुएशन की। श्रोतों, 13 साल की उम्र में पिता के व्यापार में भारी नुकसान के चलते उन्हें चूना भट्टी में फिल्मों के पोस्टर पेंट करने का मौका मिला। श्रोतों, और काम उन्हें करना पड़ा। उन्होंने मराठी रंगमंच से अपने अभिनय सफ़र की जो है श्रोतों वो शुरुआत की। उन्होंने 1978 में जो है वो फिल्म गमन में एक सहायक अभिनेता के रूप में पहला मौका जो है वो उन्हें मिला। श्रोतों, साल 1979 में आई फिल्म परिंदा में अन्ना नामक अपराध सरगान की भूमिका से उन्हें बड़ी सफलता मिली। श्रोतों, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार जो है वो मिला। श्रोतों, के बारे में जितनी तारीफ की जाए श्रोतों, फिल्म फेयर पुरस्कार 4 फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए हैं। श्रोतों, है ना, कला और सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 2013 में पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया है। श्रोतों, नाना पाटेकर अपनी सादगी और परोपकार के लिए जो है वो जाने जाते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के सूखे और संकटग्रस्त किसानों की मदद के लिए जो है वो नाम फाउंडेशन की स्थापना की थी। श्रोतों, उनके बहुत से हिट डायलॉग भी थे। श्रोतों, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, मुझे याद आ रहा है थोड़ा सा, क्रांतिवीर जो 1994 में आई थी, उनका था कि कुत्ते की तरह जीने की आदत पड़ी है सबको, है ना,
यशवंत 97 में आई थी, एक मच्छर साला आदमी को, वो बहुत ही उल्टा सा शब्द है, वो बता नहीं पाएंगे, बना देता है। तिरंगा 1993 में शोधों, अपना तो वसूल है, पहले लात फिर बात उसके बाद मुलाकात। क्रांतिवीर 1994 में आई थी शोधों, ये मुसलमान का खून ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा है और हिंदू का कौन सा है, बता जरा। वेलकम 2007 में, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, ये डायलॉग्स जो हैं ये हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, हमारे जहन में रहेंगे। नाना पाटेकर के इन प्रसिद्ध और दमदार डायलॉग्स को उनके बेहतरीन अभिनय के साथ जो है श्रोताओं वो हम हमेशा

याद करते रहेंगे, हमेशा जहन में वो हमारे रहेंगे। चलिए श्रोताओं, देखिए ये तो ज़िंदगी का सत्य है कि एक ना एक दिन हम सभी को जो है वो जाना है, और लेकिन ये एक कह सकते हैं कि एक युग का अंत जो है वो हुआ है श्रोताओं, है ना। लेकिन चलिए क्या कह सकते हैं श्रोताओं, दिल वाकई में ही बहुत भरा हुआ है, क्योंकि मैं सच में बहुत इमोशनल सा आदमी हूँ, और जब जब भी उनके बारे में पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा सा वो, चलिए शो तो थोड़ा सा हम माहौल को बदलते हैं शो तो, और माहौल को थोड़ा सा बदलते हैं, और इस लेजेंडरी, मैंने जो लेजेंडरी एक्टिंग की शो तो है ना, उसको थोड़ा सा हम याद करते हुए श्रोताओं, ये कुछ एक शब्द जो है, ये कुछ एक वर्ड्स जो हैं,

श्रोतम एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है। और वाकई में ये बिलीवेबल तो नहीं है कि नाना पाटेकर हमें छोड़ कर चले गए हैं, लेकिन क्या करें श्रोतम, बिलीव करना पड़ता है। बहरहाल हमें भी अपना काम करना पड़ेगा, यानी कि जानकारियां जो हैं वो आप तक पहुंचानी पड़ेंगी श्रोतम। तो आइए कुछ एक जानकारियां जो हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। शाहपुर में इस बार जिला स्तरीय दशहरा उत्सव को पिछले वर्ष की अपेक्षा और अधिक भव्य तरीके से मनाया जाएगा। श्रोताओं, उत्सव की तैयारियों को लेकर आज ATC ऑडिटोरियम शाहपुर में विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कानून व्यवस्था, स्वच्छता और जन सहभागिता सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। श्रोतों, विधायक केवल सिंह पठानिया ने बताया कि 17 से 20 अक्टूबर तक चलने वाले 4 दिवसीय उत्सव में 3 सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया जाएगा। उत्सव के दौरान नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए एंटी चिट्टा रैली भी निकाली जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को 17 अक्टूबर तक अपने अपने स्टॉल स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि विभागीय उपलब्धियों और नवाचारों को प्रदर्शित किया जा सके। उन्होंने कहा कि उत्सव के सफल आयोजन के लिए सभी विभागों, व्यापार मंडल, नगर पंचायत और सामाजिक संगठनों का सहयोग आवश्यक है। इस दौरान शाहपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों खबरू, वाटरफॉल, करेरी, लमडल, तत्वानी और तल माता को प्रदर्शित करने वाले फ्लैक्स भी लगाए जाएंगे। श्रोतम, भव्य शोभा यात्रा से होगा उत्सव का शुभारंभ। दशहरा उत्सव का आगाज भव्य शोभा यात्रा के साथ होगा। शोभा यात्रा मिनी सचिवालय से शुरू होकर रैलू चौक, शाहपुर बाजार, सर्विस लेन और 39 मील होते हुए दशहरा मैदान पहुंचेगी। श्रोतम, उत्सव के दौरान विभिन्न खेल गतिविधियों भी आयोजित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त भव्य प्रवेश द्वारा और सेल्फी वाइट बनाए जाएंगे श्रोतों, तथा व्यापार मंडल के सहयोग से पूरे शाहपुर बाजार को सजाया जाएगा। आयोजन स्थल पर सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दशहरा मैदान में वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। उत्सव के अवसर पर एक समविक का फ्रैक्शन भी किया जाएगा। स्थानीय कलाकारों को मिलेगा मंच, चुने जाएंगे मिस्टर एवं मिस शाहपुर। सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए 11 से 24 अक्टूबर तक शाहपुर में स्थानीय कलाकारों के ऑडिशन आयोजित किए जाएंगे। स्थानीय प्रतिभाओं के साथ स्टार कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। इस बार उत्सव में मिस्टर शाहपुर एवं मिस शाहपुर का चयन भी किया जाएगा। SDM ने तैयारियां सुनिश्चित करने का दिया आश्वासन। SDM शाहपुर डॉक्टर गणेश ठाकुर ने बैठक में विधायक का स्वागत करते हुए दशहरा उत्सव की तैयारियां की जानकारी दी। उन्होंने विधायक द्वारा दिए गए सुझावों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया और सभी विभागों से उत्सव के सफल आयोजन में सहयोग करने की अपील की। शाहपुर के पूर्व विधायक एवं मंत्री स्वर्गीय मेजर विजय सिंह मनकोटिया को श्रद्धांजलि देने के लिए बैठक की शुरुआत में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को ये मेरा बहुत प्यारा सा गीत है, मेरा अपना फेवरेट ये गीत है, सुनते

श्रोताओ एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन, आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वीडियो जो कि सचिन कपूर। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानकारियों का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा श्रोतों। और अगली जानकारी की ओर आपको लेके चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय हिमाचल का दौरा, राष्ट्रपति और प्रदेश की जनता के बीच जो है वो बड़ा ही स्नेहपूर्ण संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने वाला रहा श्रोतों। ये बात राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने राष्ट्रपति के हिमाचल प्रदेश दौरे के समापन पर मनाली स्थित DRDE हेलीपैड पर उन्हें जो है श्रोतों विदाई देने के उपरांत कही। श्रोतों राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रपति की हिमाचल प्रदेश की उपस्थिति प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का विषय रही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की गरिमाई उपस्थिति तथा लोगों के साथ उनके संवाद ने इस यात्रा को विशेष बनाया है। लंबे समय तक लोगों के मन में जो है वो बनी रहेंगी ये बातें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान एम्स बिलासपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के साथ साथ अटल टनल कुल्लू जिला के मनाली में स्थित ऐतिहासिक हडिम्बा माता मंदिर और मॉल रोड तथा लाहौल स्पीति जिला के सिसु का भी उन्होंने जो है वो श्रोतों भ्रमण भी शामिल रहा श्रोतों। तो अब से कुछ ही देर बाद यानी कि ठीक 4 मिनट बाद आप सुनेंगे श्रोतों वेड़ी गुंजन धर्मशाला में समाचार।

0: रनिंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से करीब 25 करोड़ जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है, इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार केंद्र हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें AI के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने युवाओं से भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने कौशल, रचनात्मकता और नवाचार क्षमता का सदुपयोग करने का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज एक संस्थान में श्री मुरुगन ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की केंद्रीय भूमिका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले वर्ष $863 अरब का निर्यात किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य है। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में 31वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन के पूर्वावलोकन में ये बात कही। ये शिखर सम्मेलन 12 और 13 नवंबर को विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज नई दिल्ली में गंगा पुनरुद्धार पर गठित सशक्त कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई और नदी पुनरुद्धार के कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रमुख उपायों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं की नेतृत्व वाली सामूहिक भागीदारी मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का सम्मेलन आज शुरू हुआ। भारत की PV सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: The news read by

0: सर मेरा फ़ोन चोरी हो गया सर, आपका फ़ोन दे दीजिए सर प्लीज़, एक कॉल करना है सर प्लीज़ सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: एक कॉल करूँगा सर पापा को बस सर प्लीज़ सर, फ़ोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फ़ोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक दिन के फ़ोन से फ़ोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है, ये लीजिए सर आपका फ़ोन, थैंक यू फ़ोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। फिर इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: इतने पैसे, माय,
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फ़ोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज़ करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे, और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहा है बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर।
6: डॉक्टर?
3: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
6: वो किसी को भी हो सकता है।
5: हाँ, और अगर हो गया तो बिना फूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो
5: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: तो याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या। किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियां भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। Stay tuned.

0: सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला।
1: बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने हैं क्या?

शोधो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और आप सभी इस समय बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम में। गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं अपने अपने रेडियो सेट पर रेडी गुंजन धर्मशाला में। आइए श्रोतो कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को अगली इस जानकारी की और श्रोतों खेल समाचारों से जुड़ी ये जानकारी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसलिंग ने बुधवार को पुरुष खिलाड़ियों की ताज़ा T20 और वनडे रैंकिंग जारी की है। श्रोतों भारतीय T20 टीम के कप्तान शेयर्स अय्यर ने जबरदस्त छलांग लगाई है। श्रोतों वह T20 बल्लेबाजों की लिस्ट में 18वें स्थान पर थे और अब चढ़कर जो है वो 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं श्रोतों, जो उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। श्रोतों उनके खाते में फिलहाल 786 रेटिंग अंक हैं। 31 वर्षीय अय्यर ने T20 में पहली बार टॉप 10 रैंकिंग में एंट्री की है। श्रोतों उन्होंने मंगलवार को वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पहले T20 में तूफानी शतक जमाया। अय्यर ने श्रोतों लखनऊ के मैदान में 43 गेंदों में नवाद 102 रन बनाए, जैसे कि आप सभी बखूबी जानते हैं, जिसमें 10 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। श्रोतों ये उनके T20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक था। टॉप 10 बल्लेबाजों में अब 4 भारतीय हैं। ईशान किशन 902 पहले स्थान पर विराजमान हैं। अभिषेक शर्मा 886 दूसरे स्थान पर है, जबकि तिलक वर्मा 719 तीसरे स्थान का पायदान उन्होंने जो है वो संभाला हुआ है। श्रोतों वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाज भी जो है वो श्रोतों लास्ट ट्रेनिंग में बहुत बेहतरीन उन्होंने भी जो है वो प्रदर्शन किया। श्रोतों इसी के साथ साथ बताना चाहते हैं श्रोतों T20 रैंकिंग में जो है वो अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर बने हुए हैं, तिलक वर्मा भी बने हुए हैं श्रोतों, जिससे भारत के 4 बल्लेबाज शीर्ष 10 में शामिल हो गए हैं। श्रोतों 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी 8वें स्थान के पायदान पर जो है वो बने हुए हैं। श्रोतों इसी तरह से जानकारियों का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। श्रोतों जानकारियों का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

शुद्ध ये है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, आपका अपना वीडियो रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी सुन रहे हैं इस समय कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ अपने श्रोताओं को रूबरू करवाते हैं। हिमाचल प्रदेश सक्षम गुड़िया अवार्ड की उपाध्यक्ष अरुण महाजन ने महिला एवं बाल विकास विभाग के धर्मशाला स्थित कार्यालय में विभाग की योजनाओं समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा जब इनका लाभ प्रत्येक पात्र एवं ज़रूरतमंद महिला और बच्चे तक समयवृत्त तरीके से जो है वो पहुँचे। उन्होंने अधिकारियों को ज़मीनी स्तर पर योजनाओं की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता गतिविधियों को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। श्रोतों, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में पुलिस, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा अन्य संबंधित विभागों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करने पर भी जो है वो जोर दिया। श्रोतों, अरुण महाजन ने बताया कि कांगड़ा में वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से अब तक प्राप्त 165 मामलों का निपटारा किया गया है। इसी प्रकार महिला हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त 131 मामलों का भी निपटारा किया गया है। इनमें 77 मामलों में कानूनी सहायता, 55 मामलों में मनोसामाजिक परामर्श, 31 मामलों में पुलिस सहायता तथा 1 मामले में अस्थाई आश्रय उपलब्ध करवाया गया है। श्रोतों, इसी के साथ जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोतों को इस गीत की ओर।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं। तो श्रोतो आप सभी से एक गुजारिश है कि पर्यावरण का ख्याल जो है वो ज़रूर रखे। श्रोतो देखिए ना, हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जो है वो पेड़ काटते तो रहते हैं और आए दिन जो है वो काट रहे हैं, लेकिन उन पेड़ों का जो हम पेड़ काट रहे हैं उसकी बदौलत हम बहुत से फ़ायदे जो हैं वो ले रहे हैं उस पेड़ की बदौलत, लेकिन उस पेड़ को बड़ा होने में जो है वो कितना समय लगा है श्रोतों, ये हम सभी बखूबी जानते हैं, है ना। लेकिन चलिए, ज़रूरत के हिसाब से अगर हम वनों का कटाव कर भी रहे हैं तो ज़रूरत ये है कि हम उतने पेड़ लगाने की जो है वो क्षमता भी ज़रूर रखें, उतने पेड़ों को जो है वो ज़रूर लगाए श्रोतों, और नशे से जो है वो अपने बच्चों को ज़रूर दूर लेके जाए श्रोतों। जितना भी सूखा नशा इस समय हिमाचल में भी अपने पांव जो है वो पिसार चुका है श्रोतों, तो सूखे नशे से जितना हो सके उतना दूर जो है वो ज़रूर रहिएगा, अपने बच्चों को ज़रूर दूर रखिएगा श्रोतों, और माँ बाप का ख्याल जो है वो हमेशा रखिएगा, हर पल रखिएगा, हर दम रखिएगा श्रोतों। इसी के साथ लेके चलेंगे अब हम आपको इस प्यारे से गीत की ओर, और श्रोतों गीत की ओर तो ज़रूर लेके जाएंगे, लेकिन अब समय हो चुका है एक छोटे से अंतराल का, आप सभी के वीडियो सेट पर रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: सर मेरा फ़ोन चोरी हो गया सर, आपका फ़ोन दे दीजिए सर प्लीज़, एक कॉल करना है सर प्लीज़ सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: मैं एक कॉल करूँगा सर पापा को बस सर प्लीज़ सर, फ़ोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फ़ोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक जन के फ़ोन से फ़ोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है, ये लीजिए सर आपका फ़ोन, थैंक यू फ़ोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: कितने पैसे?
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे, और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर।
6: डॉक्टर?
3: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
6: वो किसी को भी हो सकता है।
5: हाँ, और अगर हो गया तो बिना फूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो
5: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती हैं। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या। किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियां भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। स्टे ट्यून्ड।

0: सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला।
1: तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने हैं क्या?

0: शुद्ध एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, और कार्यक्रम आप सभी बखूबी सुन रहे हैं मेरे साथ सचिन कपूर के साथ गुड इवनिंग धर्मशाला। कोशिश की है श्रोताओं, और कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो मैंने भी कोशिश की है कि कुछ एक जानकारियों के साथ जो है वो आपको रूबरू करवा सकूँ, अपनी कम्युनिटी के लोगों को जो है वो रूबरू करवा सकूँ कुछ एक जानकारियों के साथ। भूल हुई हो तो माफ़ ज़रूर कीजिएगा, प्रयास जो है इंसान कहते हैं हर दिन जो है वो सीखता है, हर दिन जो है वो प्रयासरत रहता है श्रोतों। तो अब 7:45 हो चुके हैं और श्रोतों अब वक्त हो चुका है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों
1: के लिए। 15,75,00,000 रुपये की राशि की जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जोश टीमों का किया शुभारंभ। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने कांग्रेस के प्रदर्शन को सियासी ड्रामा दिया करार, कहा पंचायत चुनावों में जनता ने किया कांग्रेस का सूपड़ा साफ। और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा श्रमिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने में ट्रेड यूनियनों की अहम भूमिका। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के बाद आज दिल्ली लौट गई हैं। इस दौरान राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने मनाली स्थित DRDE हेलीपैड पर उन्हें गरिमापूर्ण विदाई दी। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रपति की प्रदेश में उपस्थिति प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का विषय रही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का ये दौरा देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद और हिमाचल की जनता के बीच गहरे व आत्मीय संबंधों की अभिव्यक्ति भी रहा। राज्यपाल ने राष्ट्रपति द्वारा हिमाचल प्रदेश में बिताए गए बहुमूल्य समय के लिए उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के रोहडू और रामपुर विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 15,75,00,000 रुपए की राशि जारी की है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत इन क्षेत्रों के प्रवास के दौरान भटवाड़ी और काशापाट में स्थानीय लोगों व बच्चों से किए गए वायदों को पूरा करने के लिए ये धनराशि जारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम केवल जनसंवाद का माध्यम ही नहीं बल्कि जन समस्याओं के समाधान और मौके पर किए गए वायदों को धरातल पर उतारने का प्रभावी माध्यम बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं की नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पहले चरण में युवाओं के नेतृत्व में सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने और तपेदिक मुक्त भारत के संदेश को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के उद्देश्य से 11

0: राज्यों के 55 जिलों में जोश टीमें शुरू की जाएंगी। जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि भारत में तपेदिक के उपचार की दर बढ़कर 92% हो गई है, जो वैश्विक स्तर पर 78% की तुलना में काफी अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वयंसेवकों से स्वच्छता, स्वस्थ जीवन शैली और तंबाकू व नशीले पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने का आग्रह किया।
1: मैं वॉलंटियर से ये निवेदन करूंगा कि आपने लोगों में भय को समाप्त करने पर बहुत जोर। लोग भय के कारण अपने जांच नहीं कराते, डरते हैं। उस भय से मुक्त करना है, बस उनको लेके आना है और उनके थूक का जांच हो जाए इसको सुनिश्चित करना है, या एक्सरे उनका हो जाए इसको सुनिश्चित करना है। जितनी स्क्रीनिंग बढ़ेगी उतना ज्यादा हम इलाज कर पाएंगे और हम टीबी मुक्त भारत की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, इस बात को हमको ध्यान में रखना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में बात कर रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ भारत के नए सामान्य सिद्धांत के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है और न्यू नॉर्मल तय कर दिया है।
2: सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करे। तीसरा, हम आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
3: दीदी, आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
4: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
3: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
4: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
5: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
7: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
6: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
7: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
6: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
7: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
6: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
7: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेश वासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
6: लड़ी हक की लड़ाई,
7: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में, भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा कांग्रेस द्वारा चुनाव आयुक्त के खिलाफ किए गए प्रदर्शन को सियासी ड्रामा करार दिया है। हमीरपुर से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की वोट चोरी की असली साजिश

0: प्रदेश की पंचायतों में बेनकाब हो चुकी है और उसका दोहरा चरित्र अब देश व प्रदेश की जनता पूरी तरह जान गई है। राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव बैलेट पेपर से हुए हैं और इसी छोटी संसद में जनता ने राज्य सरकार के 3 साल के रिपोर्ट कार्ड पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर उसे आईना दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिला हमीरपुर में ही जिला परिषद की 19 सीटों में से कांग्रेस केवल एक ही सीट जीत पाई। राजेंद्र राणा ने कहा कि भाजपा ने एसआईआर से देश को निष्पक्ष व्यवस्था दी है और फर्जी वोटर बेनकाब हुए हैं जो कांग्रेस का वोट बैंक था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब अपनी हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने के बजाय पंचायत चुनावों में मिली हार पर चिंतन करना चाहिए।
1: पूरे देश में और खास तौर पर हिमाचल प्रदेश में जिस कांग्रेस पार्टी वोट चोरी का नारा देके जिस तरीके से नौटंकी कर रही, कुछ महीने पहले हिमाचल प्रदेश में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, 12 जिलों में से 11 जिलों पे भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिनका अपना गृह जिला हमीरपुर है वहां 19 जिला परिषद की सीटों में से एक सीट मात्र वो कांग्रेस पार्टी जीत पाई। इसके अलावा 12 जिलों में से 11 जिलों पे जिला परिषद के चेयरमैन वाइस चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के, तो वहां कहां वोट चोरी होगी। और दूसरा एसआईआर को लेकर जिस तरीके से हल्ला कर रहे हैं, इससे पहले भी कई बार एसआईआर हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश में 3.5-4 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी तब इलेक्शन कमीशन ठीक है, तब ईवीएम भी ठीक है।
0: तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि श्रम कल्याण बोर्ड के माध्यम से प्रदेश के कामगारों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। घुमारवीं में आज प्रदेश इंटक की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि पात्र श्रमिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में ट्रेड यूनियनों की अहम भूमिका है। राजेश धर्माणी ने कहा कि श्रमिक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनके अधिकारों व सामाजिक सुरक्षा का संरक्षण सरकार और श्रमिक संगठनों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय हिमाचल प्रवास के बाद दिल्ली लौटी। राज्यपाल ने प्रदेश में बिताए गए बहुमूल्य समय के लिए राष्ट्रपति का जताया आभार। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने रोहडू व रामपुर विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 15.75 करोड़ रुपए की राशि की जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जोश टीमों का किया शुभारंभ। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने कांग्रेस के प्रदर्शन को सियासी ड्रामा दिया करार। कहा, पंचायत चुनावों में जनता ने किया कांग्रेस का सूपड़ा साफ। और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा, श्रमिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में ट्रेड यूनियनों की अहम भूमिका। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
2: श्रोतो FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं आपके साथ आरजे सचिन कपूर बना हुआ था। श्रोतो अब मुझे यानी आपके अपने आरजे सचिन कपूर को दीजिए इजाज़त। और कहते हैं ना, इंसान जो है वो हर रोज़ सीखता है और सीखने का बहाना जो है वो चाहिए होता है। श्रोतो रोज़ाना सीखता है और सीखता ही चला जाता है क्योंकि ज़िंदगी सिखाने का ही तो नाम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सचिन कपूर आप सभी से लेता हूँ, अब सभी को कहता हूँ अब अलविदा। श्रोताओं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि पंख होते तो मैं भी कहीं ना कहीं उड़ जाता।

0: सर मेरा फोन चोरी हो गया, आपका फोन दे दीजिए सर प्लीज, एक कॉल करना है सर प्लीज सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: एक कॉल करूँ सर पापा को बस सर प्लीज सर, फोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक जन के फोन से फोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है, ये लीजिए सर आपका फोन, थैंक यू फोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: इतने पैसे, माय,
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जा रहे हैं ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर।
6: डॉक्टर?
3: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
6: वो किसी को भी हो सकता है।
5: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो
5: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: तो याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं। फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या, किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियाँ भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। स्टे ट्यून्ड।

सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने क्या?

0: सर मेरा फोन चोरी हो गया, आपका फोन दे दीजिए सर प्लीज, एक कॉल करना है सर प्लीज सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: एक कॉल करूँ सर पापा को बस सर प्लीज सर, फोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक जन के फोन से फोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है ये लीजिए सर आपका फोन, थैंक यू फोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: कितने पैसे? माय,
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे, और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर। अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
6: वो किसी को भी हो सकता है।
5: हाँ, और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो
5: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।